संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: धरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सावन प्रभात की इस पुण्य बेला में मॉरिसस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास की पूजा और अपने चरम पर हैं भगवान का, और पूजन निरंतर हो रहा है भगवान शिव के विषय में, और शिव पुराण कह रहा है कि जय जय जगदेक नाथ शंभु प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव अतिगत कालुष प्रपंच वाचा मपि मनसा पदवी मती तत्त्वम्। कि जगत के एकमात्र रक्षक नित्य चिन्मय स्वभाव प्रकृति मनोहर हे शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है, आपकी जय हो भगवान। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टिता स्वात्म तुल्य महाशक्ते जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है, आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं, आपकी जय हो। अनंत कांति संपन्न जया सदृश विग्रह अतर्क्य महिमाधार जयाना कुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आपका अतर्क्य महिमा के आधार है तथा शांतिमय मंगल के निकेतन है भगवान, आपकी जय हो जय हो। निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय निरंतर परानंद जय निवृत्ति कारण। निरंजन मतलब निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले हे भगवान शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण हे प्रभो, आपकी जय हो। जयाति परमेश्वरीय जयाति करुणास्पद जय सर्व तंत्र सर्वस्व जया सदृश वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है, प्रभु आपकी जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। जेनेदं भूतं भुवनं भविक्यत् परिगृहीतं मितं सर्वे येन यज्ञसस्तास्ते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत संबंधी सभी वस्तुओं ग्रहण की जाती है तथा जिसके द्वारा सात होता वाला अनिष्ट होम यज्ञ संपन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। यस्मिन् नितसाम जजुरेखि यस्मिन् प्रतिष्ठा स्थान भीराः जस्मिन् चित्तगुं सर्वमुतं यज्ञानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस मन में रत चक्र की नाभि में अकोरों के समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित है तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसके प्रजा का सब पदार्थ से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। सुखारतिरस्वा निर्विजाज मुख्या निनेतयंत बिखुभाभिराज इव हत प्रतिष्ठम जदजिरम जीवन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रेष्ठ सारथी जैसा घोड़े का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन तथा नियंत्रण करने वाला है, जो हृदय में रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। इस प्रकार से जो मंत्र और मन संबंधित मंत्रों से एकाग्रित इंद्रियों को बस में कर सकता है और इंद्रियों को बस में करने से संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगल

पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज 20 अगस्त 2026 हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सती माता ने बहुत प्रकार से भगवान त्रिपुरारी महादेव से उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछी, परंतु भगवान शिव ने कुछ ना कहा। इसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हुए आज दोहा संख्या 57, दोहा नंबर 57 को हम पाठ करते हुए आगे बढ़ाते हैं। सती हृदय अनुमान किया, सबु जानेउ सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु मैं शंभुसन, नारी सहज जर अज्ञ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती माता ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख है और बेबस समझ होती है। जल उपय सरी सविकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपत कठाई परत प्रूनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपत रूपी खट्टाई परती ही पानी अलग हो जाते हैं, दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहा है।

0: अपनी करणी को याद करके सती माता के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शिव कृपा के परम अताह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। चलिए आज इसको यही विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

योयोध्यस्मज्जोराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आदरणीय श्रोताओं नमस्ते। श्रावण एवं वेद मास के अवसर पर आयुषाभा मोरिशस के पुरोहित जीवन महादेव आपका हार्दिक स्वागत करता है। ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, ईश्वर की कृपा क्या है, उनको धर्मयुक्त मार्ग पर चलाता है, धर्म का ज्ञान देता है। पूर्व में जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे, धर्म क्षेत्र ज्ञान आदि पर चल करके अपने अधर्म को छोड़ दिया है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब ज्ञान बढ़ जाता है और अधर्म धर्म की पहचान होने लग जाती है। जो व्यक्ति कुटिल आचरण करता है, अर्थात मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार आदि में कुछ और, उन्हीं से उन्हीं की हानि होती है। धर्म इन सारी कुटिल आचरणों को मिटा देता है। जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन पर ईश्वर कृपा करता है। यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करना, जितना सामर्थ्य है ईश्वर की वाणी वेद अनुसार कर्म करना, यदि ईश्वर की सौ आज्ञाओं को किसी ने जाना तो प्रयास करें कि यथाशक्ति पालन करें। जैसे कि कोई 50% पालन करते हैं, कुछ लोग 75%, कुछ लोग 70%, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मनुष्य को जितने सुख लाभ आदि मिले उन सब का मूल परमेश्वर है। जो परमेश्वर में विश्वास करता है उसी को सर्वोपरि मानता है, उसे परमात्मा पाप कर्मों से अलग करता है। परमेश्वर भक्त को ज्ञान देता है और वह अच्छे बुरे की जानकारी पा जाता है। इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पाप कर्म करने वालों की क्या दशा होती है, और कुछ बुराई करने वाले जब सन्मार्ग पर चलने लगे तब बहुत बड़े संत भी हो गए। एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना न करें। यदि किसी की आज्ञा वेदानुकूल है तो वह ईश्वर आज्ञा है। जो सच्चे दिल से ईश्वर की उपासना करता है ईश्वर उसे विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान देता है। उस समस्त कुटिल के व्यवहार छल कपट आदि सब दूर हो जाते हैं। अग्निनय का अर्थ है स्वप्रकाश स्वरूप, करुणामय दिव्य स्वरूप, चमकने वाले उत्तम श्रेष्ठ, ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए उसे उपासक कह रहे हैं, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्व प्रशंसा का विभिन्न सेवन करें। इससे विद्वान सबको जाने वाले आप हम लोगों से जुहुराणम अर्थात कुटिलता रूप से पृथक करें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ॐ त्वं च सोम नु वशो जीवातु न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महा

सभा की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेद मास की शुभकामना आप सभी श्रोताओं को है। मैं पंडिता राजवंती पियती। उक्त मंत्र में वेद माता अवश्य निर्देश देती है। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे श्रेष्ठ, कर्मों की प्रेरणा देने वाले परमेश्वर, आप हम लोगों के जीवन को वश में रखने वाले, स्थिर रखने वाले और प्रकाशित करने वाले हो। आप प्रिय स्तोत्र हैं। आपके स्तुति वचन सुनकर हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। आप सेवनीय पदार्थों के रक्षक हैं, इसलिए आपकी कृपा से हम अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु न पाए। श्रोतागण, इस मंत्र का भावार्थ यह होता है कि परमात्मा मनुष्यों के जीवन को वश में रखने वाला और प्रकाशित करने वाला है। फिर परमेश्वर प्रिय स्तोत्र है, क्योंकि उसके स्तुति वचन सुनकर हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। पुनः परमेश्वर हम अपनी महान शक्ति से मनुष्यों द्वारा सेवनीय पदार्थों की रक्षा करता है। फिर प्रभु की कृपा से हम अकाल मृत्यु के वश में न जावें। न मरामे का अर्थ होता है, करते हुए हमने महर्षि दयानंद के जो शब्दों को ही रख दिया है। इस मंत्र और इसके महर्षि भाष्य से यह सिद्ध होता है कि स्वामी जी अकाल मृत्यु को मानते थे। तो परमात्मा की कृपा से हम अकाल मृत्यु से बच पाते हैं। परमात्मा पर ध्यान देते हुए हम अपना जीवन वर्तते। ओम असतो मा सद्गमय

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: अथ वेद मंत्राः ओम। येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्त्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः।
2: जिस ईश्वरीय सत्य ज्ञान से सभी देवता विद्वान विदुषी पवित्र होते हैं, ऐसे वेद ज्ञान के सरोवर में नित्य स्नान करना एक पवित्र कर्म है। उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और ईश्वर की भक्ति से ही तन मन बुद्धि और आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। अतः हर संभव उपाय से सत्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपने कर्म व व्यवहार को उत्तम एवं पाप रहित बनाते चलें और भगवान की भक्ति को कभी न भूलें। निष्काम ज्ञानी जिस पवित्र वेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं, उस सहस्र आनंद धाराओं वाले अमृत रूपी ज्ञान अर्थात वेद की पवित्र ऋचाएं हमें पवित्र करें।
1: ओम उभाभ्याम देव सवितः पवित्रेण सवेन च माम पुनीः विश्वतः।
2: परमात्मा दिव्य गुणों का सागर हैं, वही सब जीवों को सत्कर्मों में प्रेरित करता है। मानव ईश्वर का पवित्र ज्ञान प्राप्त कर यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता है और अपने मन बुद्धि और आत्मा को पवित्र बनाने में सफल होता है। सविता देव परमात्मा हमें अंदर बाहर से पवित्र करें। ज्ञान विज्ञान कर्म उपासना आदि के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनावें। हमारे शरीर मन बुद्धि और विचार स्वस्थ शुद्ध और सबल हो। हमारे बाह्यकरण अर्थात सभी इंद्रियां एवं अंतःकरण नित्य पवित्र बने और इस प्रकार से पवित्र बने जिससे कि हम उत्तम कर्म करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना सकें। हे परमात्मा, मुझे भी इस संसार में पवित्र बनाइए।
1: ओम समुद्र ईशे स्रवताम अग्निः पृथिव्यावसि चंद्रमा नक्षत्राणाम ईशे त्वमेक वृषो भव।
2: बहती हुई नदियों का स्वामी समुद्र है। समुद्र से ही नदियां उत्पन्न होती हैं और नदियों का अधिकांश जल समुद्र में विलीन हो जाता है। अर्थात सूर्य की तेज किरणों से समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में मेघ का रूप धारण कर लेता है। पश्चात मेघ वर्षा का रूप धारण कर जलाशय व नदियों में परिवर्तित हो जाता है। जब ही जल धरती को प्राप्त होता है तो उससे संसार का कल्याण होता है। बहता हुआ जल पुनः समुद्र को प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी उस समुद्र को अपनी व्यवस्था में रखती है, परंतु पृथ्वी को अपने वश में कौन रखता है। अग्नि ही पृथ्वी को ऊर्जा और स्थिरता प्रदान कर अपने वश में रखती है। चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है, वह चांदनी से सबको प्रसन्न रखता है। इसी प्रकार सत्य ज्ञान को अर्जित कर हमें समुद्र पृथ्वी और चंद्रमा की भांति अग्रणी देवतुल्य परोपकारी बनना चाहिए। हम सब मानव का कर्तव्य है कि जल अग्नि पृथ्वी चंद्रमा की भांति परोपकारी बने।
1: इति वे

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे करुणा। नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी को नमस्कार। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़ने वाले दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर एक बिजनेस फोरम लगाया गया। कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व कड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या राहत देने की कोशिश करेगा उसे भी कड़े आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। और अब मौसम की रिपोर्ट। मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर में भी धूप खिली रहेगी, केवल पश्चिम में कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 5:58 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

सल्लल्लाहु अलैहिम। अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं।

0: रोज़ वो हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, क्या आपने उनके पहलू में एक छड़ी से खोंच दिया। उन्होंने उसका इंतकाम लेना चाहा, आप उस पर राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदन पर कमीज है, हालांकि मेरे बदन पर उस वक्त कमीज न थी। आपने भी अपनी कमीज मुबारक उठा दी। कमीज का उठाना था कि वह आप से लिपट गए, पहलू चूमे और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकसूद यही था। जब आपकी खिदमत में अब्दुल कैस का वफ्द हाजिर हुआ तो सवारी से उतरने के साथ ही आप साथ ही सब के सब दौड़े और आपके हाथ और पाँव को बोसा दिया। ये अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब बाब फी कुबलतिल जसद में है। एक सहाबी ने हज्जतुल वदा में आपकी ज़ियारत की, आपके कदम चूमे और आपकी रिसालत का इकरार किया और आपकी बातें सुनते रहे। हज़रत ज़ाहिर एक बदवी देहाती सहाबी थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत मोहब्बत रखते थे, बहुत ज़्यादा चाहते और आपकी खिदमत में हदिया भेजा करते हैं। आप भी इनसे मोहब्बत करते और फरमाया करते थे कि ज़ाहिर हमारा बदवी देहाती है और हम उसके शहरी हैं। एक दिन वो अपना सामान फरोख कर रहे थे, आपने पीछे से आकर उनको गोद में ले लिया और उन्होंने कहा कि कौन है, छोड़ दें, लेकिन मुड़कर देखा और मालूम हुआ कि आप हैं, तो अपनी पुश को बार बार आपके सीने से चिमटाते रहे और तस्कीन ना होती थी। ये है सहाबे किराम का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वालिहाना अकीदत और मोहब्बत, जिनकी बिना पर उन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क़ुर्ब नसीब हुआ। अरब में ये ख्याल था अगर किसी के पांव सो जाएं, सुन हो जाएं और वो अपने महबूब को याद करे तो ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। एक बार अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के पांव सो गए तो किसी ने कहा अपने महबूब को याद कर लो, बोले या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफ़रद में बयान किया। हज़रत उम्मे आतिया एक सहाबिया थी, जब भी आपका ज़िक्र करती तो इंतहाई मुसर्रत से ये पुकारती, कहती कि मेरे बाप आप पर कुर्बान हो। इज़्ज़त व मोहब्बत की वजह से सहाबे किराम आपके आराम और आराइश का नहायत ख्याल रखते और आपकी किसी किस्म की तकलीफ़ वो गवारा ना करते। आप एक सफ़र में थे जिसमें एक सहाबी ने नहायत एहतमाम के साथ आपके लिए पानी ठंडा किया। ये किताब ज़ुहद में नसई शरीफ के। अलगरज सहाबे किराम की मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज थे, अल्लाह पाक हमें भी उनकी मोहब्बत का फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: अभी आपने जामी मस्जिद पोर्टविस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहुमुल आलिया का बयान सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی

अल्लाह ताला के बारे में बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें कोई हुक्म देते तो वो फौरन उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। यही कैफियत सुलह हुदैबिया के मौके पर भी नज़र आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुर्बानी करने और सर मुंदवाने का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर शदीद गम की वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला फौरन नहीं उठे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से ख़ुद कुर्बानी फरमाई तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम तकाजा इताअत है। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा काफ़ी नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने अमल से दिखाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़ह हो जाए तो मुसलमान अपनी ख्वाहिश राय और पसंद को पीछे रख देता है।

सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ सवालात लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। उन्होंने पूछा कि क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ यकीनन। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अपने रब की नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा, लिहाजा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मजबूती से थामे रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का अदब सिर्फ ज़ाहिरी ताज़ीम नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल यकीन था। जब किसी मामले की हिकमत फौरन समझ न आती तब भी वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर एतमाद रखते।

सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को तहरीर करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने को फरमाया। कुरैश के नुमाइंदे सुहैल बिन अमरू ने रसूलुल्लाह के अल्फाज पर एतराज़ किया। मुआहिदे की सूरत हाल के मुताबिक इन अल्फाज को तब्दील करने की बात हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ इस अल्फाज को मिटाना बहुत गिरा था, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसे मिटा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तर्ज अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत और अदब की गहराई को ज़ाहिर करता है। अलबत्ता इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हिकमत, सब्र और बड़े मकसद को सामने रखते थे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिलों में अदब था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के सामने आखिरकार सब सर तस्लीम खम करते थे। मोहतरम सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हमारे ईमान का नहायत अहम हिस्सा है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। घर में बच्चों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर उस पर अमल करने की नियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत और कामिल अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामिन मुहतरम, आइए सबाल खैर के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।

94.6 98.2 MHz మీద RM3

सिद्धार्थ अमित भवसार एंड पार्थ भरत ठक्कर. भाई गीतों तो कई पण कहो 2026 ना जेटला पण गीतों आवी रहा छे लाजवाब अने एकदम कहीए ने के सुपर थी उपर गीतों छे आ गीतों तमारा माटे अमे लई आव्या छे. एंड कमिंग अप आपणुं आगलुं गीत जय कन्हैया लाल की फिल्म मां नजर आवेला छे सिद्धार्थ रंधेरिया. एंड सिद्धार्थ रंधेरिया ने रंधेरिया नी जेटली पण मूवीज तमे उपाडीने जोई लो, ज्यारे पण तमने डिप्रेशन लागे ने, ज्यारे पण तमने एम लागे ने के भाई जीवन मां काई नथी राख्युं, जीवन मां बस फक्त टेन्शन ने टेन्शन ज छे, त्यारे तमे सिद्धार्थ रंधेरिया नी फिल्म जोई लो. तमने क्यां थी क्यां लई जाय छे. तो कमिंग अप विथ थन घन ता मोर करे

भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, जीवन भक्ति के बिना अधूरा है। हम कर्म करते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। हर कर्म का परिणाम मिलता ही है। कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं और कुछ क्रियमाण होते हैं। संचित कर्म वे हैं जो हम पीछे कहीं कुछ करके आए हैं, हमें भी उसके बारे में याद नहीं है। और प्रारब्ध कर्म वे हैं जो हम अपने साथ अभी कर रहे हैं और क्रियमाण जो अभी आगे कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तीनों प्रकार के कर्म हमारे साथ चलते ही रहते हैं। कुछ भविष्य में हो रहे हैं, कुछ वर्तमान में हो रहे हैं और कुछ अतीत में हमारे साथ पहुँचे हैं। जो अतीत के संचित कर्म हैं, उनके अनुसार हमारा जन्म, हमारा घर, हमारे माता पिता, ये सब कुछ हमको मिलता है। और प्रारब्ध कर्मों में हम जो कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ साथ के साथ मिलता है और कुछ संचित में चला जाता है, और क्रियमाण जो अगले पल में हम सोचकर कर रहे हैं। तो श्रोताओं, भक्ति जो है वह हमें कर्म करना सिखाती है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म, उसका फल मिलता ही है। अच्छे कर्मों का फल चित्त में शांति, मन में उल्लास, अच्छा घर, रोटी की चिंता नहीं, यह सब होता है। लेकिन जहाँ बुरे कर्म हैं, कभी कभी वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही बुरी हो जाती हैं। लेकिन श्रोताओं, जब प्रभु से हम जुड़ने लगते हैं तो हम अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करने लगते हैं। तब हम एक है कर्म, एक है सुकर्म और एक है विकर्म, विशेष कर्म। तो विशेष कर्म कौन सा है? जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है। तब हम किसी तरह के लाभ हानि या किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते हैं, तो ये हमारे विकर्म कहलाते हैं। तो श्रोताओं, इस भजन को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।

शेष चंद्रमाल लाट झलकत मुंडमाल गल शेष धरनि पर पार्वती पति शिव हर हर हर पार्वती पति शिव हर हर हर पार्वती पति शिव हर हर।

श्रोताओं, जो भी कर्म किसी इच्छा से किए जाते हैं वे हमें परिणाम देते हैं। अच्छा बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है, लेकिन जब हम निर्भय होकर सत्कर्म करते हैं पर वह अपने प्रभु को समर्पित करते चले जाते हैं कि प्रभु ये आपके नाम पर, मुझे आपके चरणों में चित्त लगाना है, तो वे कर्म विशेष हो जाते हैं। तो श्रोताओं, इसीलिए भक्ति की शक्ति अनोखी है। जिस जिसने भक्ति की, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, वह संसार के ऐश्वर्य को पाने की इच्छा से अलग था। जैसे उदाहरण के लिए सुदामा गए तो थे कुछ मांगने, लेकिन कुछ नहीं मांग पाए। शबरी बेर लेकर बैठी है, रोज जगह बुहारती है कि आज उसके राम आएंगे। उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए। तो जो भक्ति है, उसकी जब शक्ति किसी को मिलने लगती है तो जीवन में एक अनोखापन आ जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इस भजन का।

श्रोताओं, ईश्वर से हम जितना जुड़ने लगते हैं उतना ही जीवन में निर्भयता आती है, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। हर जीव में हम उसको देखते हैं। कभी कभी कोई कह सकता है कि सामने वाला ने मुझे गाली दी या बुरा भला मुझे कहा, लेकिन श्रोताओं, मन में उसका धन्यवाद करें। जब भी कोई आपसे कुछ बुरा बोलता है या ऊंची आवाज में बात करता है तो समझ लीजिए आपका एक कर्म उसने काट डाला, इसलिए मन से उसे धन्यवाद दीजिए।

श्रोताओं, केवल परमात्मा से डरना चाहिए और किसी से नहीं। तो किसका मन ऐसे हो सकेगा जो सच के राह पर चलता है, जो सत्य को अपनाता है, वह निर्भीक होकर आगे बढ़ पाता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं में उलझे हैं, अपने लालच के कारण गलत काम कर लेते हैं, वे लोग हर समय डरे ही रहते हैं। पर जो परमात्मा से जुड़ जाता है, वह अभयम वै ब्रह्म की तरह से एकदम निर्भीक होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि वह शरीर नाश से डरता नहीं, साधनों के विनाश

श्रोताओं, जिसकी बुद्धि न्यायपूर्ण होती है, जो पाप नहीं करता है, जो ऐसे काम नहीं करता जिससे समाज का कोई नुकसान पहुंचे, जो परिवार का हित देखता है, समाज का हित देखता है, यहाँ तक कि पशु पक्षी का भी हित देखता है, ऐसा व्यक्ति क्यों किसी से डरेगा? तो ये शक्ति कौन देती है? भक्ति। जितना हम प्रभु से जुड़ते हैं, उसकी करुणा को अपनाते जाते हैं, उतने ही हम निर्भीक होते हैं और सच्चे मन से भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं, इसी भजन के साथ मुझे और डोमिनिक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बल्कि वे आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भारत मॉरिशस सहयोग, विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक और ऊर्जा संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं। दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू का उद्देश्य नई साझेदारी के रास्ते खोलना है। खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और भी मजबूत करना चाहते हैं। पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है जिसका नाम शान कुमार चुलन है और जिसे मिथुन से भी जाना जाता है। वो लेमोन का रहने वाला है। जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो उससे पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है। पुलिस ने याद दिलाया कि क्रिमिनल कोड की सेक्शन 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है। गुलशन गोविंद को कल बॉम्बे अदालत में पेश किया गया। कैनाबिस की खेती और मिथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को होगी। इस बीच पुलिस की आईटी यूनिट ने सांसद वेरोनिक लुगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की। ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई। ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे। और आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं। गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजी ओगुस्त। वहीं चौथे संदिग्ध मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है और वो पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। और विदेश में रूस के रात भर किए गए मिसाइल हमलों में यूक्रेन के राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 33 लोग घायल भी रहे। हमले में अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। एक अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। कालीमाय रोड प्रोविडेंस कॉर्प्स मिलिटेयर में 72 साल की 72 ईयर ओल्ड श्रीमती पिचाया

0: चिदंबरम श्रीमती पिचाया चिदंबरम पैदाइशी नाम नारायण स्वामी जो सावित्री से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान कालीमाई गली प्रोविडेंस कॉलेज मिलिटेयर से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौंडेमास कपावे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। निर्मल रोड डागोचिया में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड श्री संजय निर्मल जो बैनाव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थिया सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अखी अख्तर श्रीमती अखी अख्तर के मकान निर्मल रोड डागोचिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Centre, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: पर मैं हूं विदिता 12:14 आज है गुरुवार 20 अगस्त सुहाना सफर में आपका स्वागत है
1: You're listening to RM3 Radio मन

रेडियो मनोरंजन RM3 के सभी हमारे प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से मैं विनीता स्वागत करती हूँ। चलिए तो यहाँ पर हमारे खूबसूरत पुराने गीतों का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है और यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए कई सारे दोस्त आ गए हैं। वेलकम करते हैं एक एक का साथ में। कविता अनु हमारे साथ है। माधुरी कैसी हो? माधुरी वो कहती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि माधुरी आती है एक दो तीन करते हुए आती है। तो चलो चार पाँच का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाइए, छा जाइए हमारे प्रोग्राम में, साथ दीजिए और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दीजिए। ये मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाय जेवीना, हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। हाय रावल, कैसे हो भाई? चलो इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है इसमें अब यहाँ पर खूबसूरत गीतों का ये जो सफ़र है इसको आगे ले चलेंगे। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगला गाना कौन सा होगा, तो अगला गाना तो वही होगा भाई

चलिए जी, 12:24 हुए हैं। वेलकम, स्वागत है आप सबों का रेडियो मनोरंजन पर। यहाँ पे करुणा राम, भारती, सुबी, सूर्या जो कि फिजी आइलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका वेलकम करते हैं। वास्तव स्वराज, जी वीना, मिस्टर नुरेदीन फ्रॉम फ्रांस, अब्दुल, सारा बानू और साथ में हाय क्रिस। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा महराली, थैंक यू सो मच। रेशमा राम की सुन, आपका स्वागत है। ज्योति चमन, थैंक यू सो मच। चलिए इसके साथ प्रभु देवा हमारे प्रोग्राम में है, क्या बात है। हाय, हाउ आर यू। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए एंड

वैसे गाने की तो बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे गाने, इतनी सारी फरमाइशें हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि सबको खुश करें, ठीक है। सो प्रभु देवा फ्रॉम यूके, क्या बात है जी, थैंक यू मनोज। हाय मनोज, हाउ आर यू? हाय रोहित, कैसे हो? चलो जी, रोहित आ गए हैं, हमारी बटरफ्लाई भी आ गई हैं, गीता जी आ गई हैं, दीप्ति गंदावरी जी, अनिल राम, भजन भी हमारे साथ हैं, सब आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं, रोहन को नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं, और आज गोपी का बर्थडे है, तो चलिए गोपी के लिए सभी साथ में चलते हैं। जाना कहाँ है मैं बताती हूँ, सबका, जितने लोगों का बर्थडे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।

सुहाना सफर। राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना कहाँ है भाई, मैं तो कहूँ चलते चलते चलते हैं और किशोर दा के साथ चलते हैं, अगले गाने के साथ चलते हैं। साहिब फिल्म का गाना है और ये गाना हम सरोज, रीना, नीलिमा, अहमद, निज़ाम बहादुर, यश, आशा बकोरी, गीता, प्राकी के लिए गाना चला रहे हैं, साथ में फॉर दीप्ति, सुबीता, सुल्ताना, निवेदी, राज और वीमी के नाम। साथ में यहाँ पर हमारे हैं वीना, पूनम, आयशा एंड विकास, बिंता भी साथ में है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बेटी यशिका जगासिया के लिए जो इटली में है, लेकिन अभी इटली से है, मॉरिशस में भी छुट्टी मना रही है। अब्दुल रिशाद, यश सभी हमारे साथ हैं एंड चलो यहाँ पर मंजुला कौले सर के लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं, साथ में धीरज कुमार के लिए एंड साथ में होगा ओके टाजन का गाना, मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी, नहीं लास्ट आवर में चलाऊंगी, अभी के लिए अरुणा के लिए और मोहिनी के लिए गाना होगा।

चलिए जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. गाना जो होगा श्वेता और भावना के नाम भी रिकीट करती हैं. शिवम हमारे साथ, ऋषि फ्रॉम पेरिस, उनकी वाइफ हेमा, उनके बेटे कवीश, तनिष और दिलान के नाम, वे आप कीर्ति, चतू, आयशा एंड विनय जो साथ दे रहे हैं. एंड साथ में यहाँ पर हमारी पूनम शंभू जी साथ हैं. हेलो जी, कैसे हो जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. ओके, सो नेक्स्ट फॉर लेडी जयश्री. ओके, अच्छा जयश्री हमारे साथ है लंदन से. एंजॉय करिए हमारे गाने. थैंक यू सो मच, कहती है थैंक, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेक माई डे. ओ आई एम सो सो सो हैप्पी जयश्री, थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. विमला पाडू, अंजू हमारे साथ है, नजीमा गोवर्धन, वी हैव स्माइल, ओके नैना. चलो तो यहाँ पर माधुरी के लिए फॉर द्रवीन एंड साथ में नम्रता के लिए, कहते हैं अभी फ्री पीरियड चल रहा है तो हम लोग आपको देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच नम्रता. एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए, वहीं पे हम गाना जो है डेडिकेट करते हैं सूबी के लिए. फॉर कहती हैं कि मैं सुनती हूँ आप सबको RM3 RM2 में, सुमी को, नीतू शाह को, बहुत अच्छे अच्छे गाने चलाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. चलो जी यहाँ पर हमारा प्यार तो सिर्फ गाने के साथ है. चलो यहाँ पर आगे हैं साहिल, नेक्स्ट गाना आ गया आपके लिए, उनको सुनिएगा और खुश हो जाइएगा. परी हमारे साथ है और चलो यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, अच्छा लगता है जब आपके मैसेज आते हैं. तो अभी नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे शैलेंद्र सिंह के जितने भी फैंस हैं उनके नाम. कहते हैं झलक दिखा के कर गया दीवाना, कौन थी पता नहीं.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: झलक दिखा के कर गई दीवाना। कौन थी पता नहीं, यही तो मैं बोल रही थी कि कौन थी पता नहीं। एक मूवी आई थी ना, वो कौन थी, उसी का गाना चलाया था हमने, देख जा गले। चलो जी, हम गले नहीं पड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, गाना भी जो है डेडिकेट करते हैं आपके लिए। आशा लखनऊ, नमस्ते ललिता दीप्ति, और साथ में यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे ख्याल से राधा शिपचन, आपके लिए गाना होगा और यही गाना हम मयूरी के नाम डेडिकेट करेंगे। और साथ में हमारे हैं बहुत सारे दोस्त और भी, थैंक यू। झलक दिखा के ब्लॉक हो जाती हो ओके। तो प्लीज़ यहाँ पर जो लोग हमारे लाइव के साथ जुड़े हुए, कभी कभी लाइव हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए हम सॉरी, रियली सॉरी। तो रेखा, आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस, मीन्स अ लॉट। एंड अभी जो होगा नेक्स्ट गाना, हम नतीजा फिल्म से लेकर आए हैं, आई गेस ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इफ़ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। एंड वी प्ले द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर यू। लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो साथ देते हैं और जिनके होने से अच्छा लगता है, जिनके होने से लगता है कि जैसे हम कभी अकेले नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। कभी कभी एक खास इंसान की याद आने पर ही जब होठों पे मुस्कान आती है ना, तो लगता है कि हाँ भाई, अकेले नहीं हैं हम। तो आई होप कि रेडियो मनोरंजन का वही जादू आप पे भी चढ़ के बोलता है ना।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए तो सुहाना सफर में अभी हमारा जो सफर है इसको हम खूबसूरत बनाते हैं चंद और खूबसूरत गीतों के साथ। और यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको कहेंगे थैंक यू हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। और हमारा जो अगला गाना होगा बहुत कमाल का है, तो ये गाना जो है रोशन मंजूरी का माया राम दोस्त तीशा रेणुका जी के लिए हम डेडिकेट करेंगे। और साथ में यही गाना जाएगा आपके लिए, गाना है आपके लिए माया जी। वैसे माया जी कहती हैं कि लाइव आज प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। अंजू हमारे साथ है, चलिए अंजू के लिए गाना होगा लॉट्स ऑफ लव टू यू। और यहीं पे यही गाना हम प्रीति सकराम के नाम डेडिकेट करेंगे एंड प्यारे से हमारी अंजू के नाम उनकी पूरी फैमिली के लिए। और उत्तम जी यही गाना हमें लेके जा रहा है समाचारों की ओर, जो आप सुनेंगे 1 बजे।

घड़ी मिलाते चलिए इस समय दिन के एक बज रहा है। आप सबों को हम बता दें कि थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं एक बजे के समाचारों की ओर, फिर उसके बाद सुहाना सफर प्रोग्राम जो हमारा है इसको हम जारी रखेंगे आपके लिए दो बजे तक।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा से सुमायरा आपको नमस्कार
1: नमस्कार राधा मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और कल ही मेबर्ग में एक समारोह का आयोजन किया गया ताकि वहां के स्थानीय मछुआरों को विशेष सुरक्षा सामग्रियां दी जा सके ताकि मछली मार में उन्हें समर्थन मिले। इसके अलावा वहां पर मौजूद मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने विभिन्न सहायक कदमों पर बात की, खासतौर पर मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं पर उन्होंने बात की। ये जाने कि देश में 2000 से ज़्यादा माहीगीर हैं। एबन में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक नए स्थल का उद्घाटन किया गया है, एक ऐसी प्रयोगशाला जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना विजन पूरा करती हैं। इसके ज़रिए नौजवान अपनी काबिलियत आजमा सकते हैं और ख़ुद अपनी परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं। विदेश में रूस के हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये हमले राजधानी यूक्रेन की राजधानी में पेश आए हैं और कम से कम 40 लोग जख्मी बताए जाते हैं। इसमें कई एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज दुगना हो गया है, वो भी सिर्फ 10 सालों में, जो कि $40 trillion है। ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के शासनों के दौरान काफ़ी खर्च किए गए और सूद दर भी काफ़ी बढ़ गई थी। सन 2016 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $20 trillion था। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। Kalimai Road, Providence, côté militaire, mais 72 sal, qui 72 years old, Shrimati Pichaya Chidambaran, Shrimati Pichaya Chidambaran. परेशी नाम नारायण सामी, जो सावित्री के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज तीन बजे इनके घर कालीमाई रोड प्रोविडेंस कॉटेज में दी थी। ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंडे मास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 3 PM। निर्मल रोड डाकोचिया में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड श्री संजय निर्मल, जो बयानो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज तीन बजे इनकी पत्नी आखी अख्तर के घर निर्मल रोड डागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: आप तक जरूर पहुंची होगी। बहुत सारे लोगों की डेडिकेशंस आई हैं, प्रिया सिबालक, मधुषा और साथ में है पेगी, नाज अब्दुल, फिजी से सुन रहे हैं हमें, हाई, वी हैव द नेक्स्ट गाना फॉर यू, जो शिवा, प्रिया प्रसाद, विद्या नायका और साथ में है प्रेमिला बाई राम जी, वी हैव लव नाउ, उनकी मम आशा फकीर के लिए गाना होगा जो पीछे काफ़े से है, डैनी जगरू फ्रॉम गुडलैंड, नाजमा, गबर्धन, राकेश, पूजा, संगीता, फातमा, सुनीता रामधनी, मीलू एंड जी वैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए भी, क्लास शुरू हो गया, इनको जाना पड़ेगा। नम्रता, थैंक यू सो मच, सायरा बानू आपका भी वेलकम है, एंड ये गाना होगा आपके लिए, जी हाँ, नमस्ते रिखाएँ, थैंक यू सो मच। फातिमा कहती है किशोर दा का ये गाना, लव इट, आई लव इट टू, मुझे भी बहुत पसंद है। ललित मोहन जी, कैसे हो आप, चलिए आपके लिए गाना हो जाए। एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर तरन जो साथ दे रहे हैं, और यही गाना होगा फॉर धनवंती चीतू के लिए। कहते हैं कि किशन रोहन बेबी का बर्थडे है, दोनों का बर्थडे है, एक का बर्थडे है, आई डोंट नो। यहीं पर हम गाना डेडिकेट करते हैं रानी के लिए, हियर वी गो अगले गाने के साथ।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए जी, हमारे सफर को सुहाना बना रही हैं मनोज पेतिया जी, और साथ में हैं जी कल्याणी, सुनील नगमा, रेशमा, ऋषि राम प्रसाद, धनेश कालीचंद। हमने तो बोला जिसने हमारा सामान लिया वो लौटा दे, सुनील जी ने बोला प्लीज मेरा भी। कमाल है। तो ऐसा करते हैं कि हम गाना आपके तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर सैम हमारे साथ हैं, उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं मंजुलिका के लिए, और यही गाना होगा सरोज की तरफ से उनके कज़िन अनीता के लिए। आज उनका बर्थडे है तो उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वनकम लक्ष्मी, स्वागतम आपका प्रोग्राम में, हम वेलकम करते हैं। भाई आज का मौसम पता नहीं क्यों बड़ा खूबसूरत लग रहा है हमें। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है तो साथ में मिलके वही प्यारा सा गाना गुनगुनाते हैं, क्या ख्याल है।

0: चलिए नेक्स्ट गाना वृंदा सोहन के लिए और चंदा सहाय के नाम डेडिकेट करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से. और यही गाना रेखा जी के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलम उनके हस्बैंड निवेश के लिए, और साथ ही में यही गाना चलता है किसके लिए भाई, ये गाना जाएगा आपके लिए नंदा मेकेन. ओके नंदा मेकेन जो कहते हैं कि मेरी सिस्टर का बर्थडे है. भाई सिस्टर का बर्थडे है तो हम ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करना जरूरी होता है. अभी गो विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं गाना आपके लिए. और ये गाना ख्वाब बुचिक से सिला जी हमारे साथ हैं उनकी सिस्टर ललिता के लिए जो कालबास से, आज उनका जन्मदिन है. बहुत सारा प्यार भाई सुनील सिस्टर माला और सभी ग्रैंड चिल्ड्रन की ओर से, मदन फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे आपको.
1: चुन दी संभाल गोरी

चलो जी, ब्यूटीफुल सा गाना था आपके लिए और बहारों के सपने फिल्म का ये गाना लता जी के साथ आवाज मिला रहे थे मन्ना डे साहब। चलिए गाना होगा अब आपके लिए जो हम लेकर आए हैं किशोरदा की आवाज में, और मैं जानती हूँ कि इस गाने को आप बहुत बहुत पसंद करेंगे, इसको आप हमारे साथ गाएंगे भी, तो तैयार हो जाए इस गाने को हमारे साथ गुनगुनाने के लिए। ये गाना हम पूजा उनके मोम राजवंती महादेव साथ में वैदेही के लिए नीरू रामसन क्लागल करुणा पुष्पिकाइन क्रिस्टिनो के नाम रॉबिनहुड पांडे नंदा मेकन सुनील और उनकी वाइफ मनीषा के लिए चला रहे।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: किसी बात पे मैं किसी से खफा हूँ, यही बातें याद कर करके इंसान जो होता है ना

बस ऐसे ही एक्युमुलेट करते हैं स्ट्रेस को प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में. अरे जो हो गया जाने दो छोड़ो. जिंदगी हर दिन हर रोज एक नई उम्मीद के साथ आता है, कुछ नए सपने लेकर आता है. जब आप अपने अतीत को बैठ के ऐसे रोते हो ना, तभी आपका जो फ्यूचर है वो ऐसे हो जाता है. आई मीन आपका प्रेजेंट खराब हो जाता है, तो ऐसा करना ही क्यों. चलो जी, अभी हम बादल पर चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ बादल पे चल के कोई नहीं आया. झूठ, यहाँ पे वो बादल पे चल के नहीं आया है, वो बादलों से निकल कर उड़ के आए हैं, प्लेन में आए हैं. यस, द नेक्स्ट गाना गोज टू राज एंड स्पेशली सचिन खंदाई के लिए, जो आए हैं मॉरिशस अभी साउथ अफ्रीका से. तो अभी साउथ अफ्रीका से निकल कर हमारे यहाँ मॉरिशस में खूबसूरत मौसम का मज़ा ले रहे हैं, तो हमने सोचा गाना भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसे सुनकर उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाए. क्या ख्याल है आपका? ऐसे मौसम में ऐसे गाने सूट करते हैं यार. मैं बोलती हूँ इंस्टेंटली मूड बदल जाता है. किसी को याद करो, किसी की स्माइल को याद करो, कुछ लम्हों को याद करो, और नहीं तो मुझे याद कर लो. नहीं, मुझे याद करोगे तो कॉमेडी हो जाएगी, रहने दो. जस्ट एंजॉय द सॉन्ग्स यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन विदिता के साथ. ये है सुहाना सफर.

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: वैसे मैं अपने सारे लिसनर्स से जो हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हैं उनसे पूछ रही थी कि जब हमारे गाने चलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गाते हैं या डांस करते हैं। किसी ने कहा कि मैं गाता हूँ, किसी ने कहा कि मैं डांस करती हूँ, और किसी ने कहा दोनों होता है। सो नेक्स्ट गाना अनुराधा, साथ में देविका, सायरा बानो, श्रेया, ललिता, बाबूलाल फैमिली के लिए, ललिता, नालिनी, संगीता, मिंता, राजीव, संजीव एंड दुर्गा के नाम। एंड वी हैव शांता, पूजा, विकास एंड रवि, साथ में है सैंडो, और यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और भी कई सारे दोस्त। तो इनको डांस करना अच्छा लगता है, इनको तरुण आए हैं, वो कहते हैं नाच बसंती नाच, यानी कि वो डांस करते हैं और गाते भी हैं और बजाते भी हैं। ठीक है जी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। सो वेलकम तरुण हमारे शो में। अब जो नेक्स्ट गाना होगा हमारा, चलिए इस अपने अंदर की हीरोइन को बाहर कीजिए। हीरोइन बोला, हीरो नहीं बोला। चलिए इस गाने के साथ डांस करके दिखाइए। But I can see you, दिल की आंखों से तो देख ही लेती हूँ मैं। ऐसे गाने क्या मौसम को खूबसूरत बनाते हैं। Listen,
2: आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना

कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो।

लगा लो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो।

0: आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है।
1: आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहां पर जब हमारे गाने चलते हैं तो बहुत कुछ होता है।
2: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो बस हमारे दोस्त ही दोस्त हैं, इनके साथ काहे का शर्म। हम तो यहाँ पर खुल के डांस करते हैं। जो लोग हमारे टिकटॉक के साथ लाइव होते हैं उनको दिखता है यहाँ पर कितनी मस्ती चलती है, बहुत ज़्यादा मस्ती चलती है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी इस मस्ती के साथ जुड़ जाइए और हमारे गीतों के साथ गुनगुनाते चलिए। ज़िंदगी में रखा है क्या है, बस यही प्यार के दो पल। तो चलिए प्यार के इन दो पलों को खूबसूरत बनाते हैं हमारे इन गीतों के साथ। और नेक्स्ट हमारा गाना होगा, हम ये गाना आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि इस गाने को आप सुनकर एकदम झूम जाएंगे और हमारे इस गाने के साथ आप भी गुनगुनाएंगे। हमारे साथ है आइविन फ्रॉम इंडोनेशिया, उनका वेलकम करते हैं। गंगाराम जी, संगीता विद्या लालू, बबीता जी स्वागत है। संगीता जी तन नमस्ते।
3: जूलियन, लैला, मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब

0: लौटना, यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।
1: यश और पूजा हमारे साथ हैं, चलिए गाना उनके लिए। यश जो कि लिवरपूल इंग्लैंड से साथ दे रहे हैं।
2: एक हसीना थी

चलिए जी, इस गाने के साथ अब जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी आपके अपने रेडियो मनोरंजन RM3 पर. मैं हूँ विदिता, अब चलती हूँ, कल मिलेंगे भूलिएगा नहीं 12 से लेके 2 बजे तक. केशनी, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना टू ऑल द पीपल ऑफ द एंड मॉरिशस, थैंक यू सो मच. थैंक यू साहिल, थैंक यू क्वीन, थैंक यू इनफाइनाइट, थैंक यू साहिल. एंड यही गाना हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं भाई. एंड साहिल ने कहा धोखा धोखा धोखा, उसको गाना अच्छा लग रहा था. चलो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. अभी हम टार्जन के साथ, देखो गाड़ी तो हमारे पास आएगी नहीं, प्लेन तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं हम टार्जन की जो रस्सी है उसको पकड़ते हैं, निकलते हैं, ओए ओए करके निकलते हैं और आपसे मिलने के लिए कल आएंगे. बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. मुशरिस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया. कल मेबग में स्थानीय मछुआरों को विशेष सामग्रियां दी गई ताकि उन्हें उनकी सुरक्षा हो. इस गतिविधि का मकसद है उनका समर्थन करना. इस मौके पर मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने मछुआरों को दी जा रही सहायता योजनाओं पर बात की. आपको बता दें कि देश में फिलहाल 2000 से ज़्यादा मछुआरे हैं. इबन में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक नए स्थल का उद्घाटन किया गया है, जहां एक नई प्रयोगशाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार्यरत है, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कार्यशाला अपना विजन पूरा करती है. इसके जरिए मुर्शिद नौजवान अपनी परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं और अपनी काबिलियतों को भी. विदेश में यूक्रेन की राजधानी में रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं. ये बताया जा रहा है कि घरों पर वार किया गया है और इस हमले में एयर डिफेंस मिसाइल को दागा गया है. अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज एक दशक में दुगना हो गया है, जो कि 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान खर्च काफ़ी बढ़ गए थे और सूद दर भी सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर था. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. SSR Road Gautier Militia Mir 77 साल के 77 years old श्री राजेंद्रा तिलकदारी, श्री राजेंद्रा तिलकदारी जो राजेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे इनके घर SSR Road Gautier Militia से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए वीरमय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक हिस्सा हमारा. नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला.
7: स्वागत करते हैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम. हर सप्ताह मतलब गुरुवार के दिन 2 से 3 बजे आप लोगों के लिए और सभी नाटक प्रेमियों के लिए यह कार्यक्रम खास तौर पे, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम नाटक की दुनिया के बारे में बात करते हैं. नाटक की दुनिया में जो चल रही घटनाएं हैं और उनमें से जो सीख हमको मिलते हैं, समाज को सुधारने की जो क्षमता है, इन सब के बारे में बात करते हैं. आज थोड़ा सा विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नाटक का उद्गम स्थान, मतलब जहाँ से वह शुरू होता है और लेखन से शुरू होता है. लिखने की भाषा में बात करेंगे, आज लेखन के बारे में बात करेंगे. हमारे साथ है विश्वानंद पत्या जी. आप संस्कृत MGI, संस्कृत प्राध्यापक हैं, MGI से हैं और नाटककार भी है, नाटक लिखते हैं. विश्वानंद जी आपका हम स्वागत करते हैं. नमस्ते.

0: धन्यवाद और नमस्ते रितेश जी।
1: और बहुत अच्छा लगा है, शायद ये पहली बार है आप हमारे कार्यक्रम में
0: जी,
1: आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम में पहली बार।
1: और आप के नाम पे दो नाटक है, आपने लिखे हैं। वैसे तो आप लघु कथा भी लिखते हैं, एकांकी भी लिखते हैं और
0: कविताएं भी
1: लिखते हैं, तो मतलब एक पूर्ण साहित्यकार है
0: कह सकते हैं, नवोदित।
1: तो चलिए इस प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपने नाटक में लिखने चलाई, लघु कथा में लिखने चलाई और बहुत सारी विधाओं में भी, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सबसे अच्छा विश्वानंद जी किस में ज्यादा अच्छा है, नाटक लेखन में, निबंध लेखन में, किस में?
0: जी हाँ, सर्वप्रथम तो मैंने अपनी लेखनी चलाई कविता में।
1: अरे वाह।
0: और इसका प्रोत्साहन मुझे प्राप्त हुआ MGI के प्रांगण में, मतलब MGI में, वहाँ पर जो मेरे मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो पहली बार के लिए मैंने एक कविता लिखी जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है, जीवन के लक्ष्य को पहचानो। अब टाइटल तो मुझे मिल गया, विषय तो मुझे मिल गया, लेकिन उसमें मैं क्या लिखूं इसके बारे में मैं 2-3 दिन ऐसे सोचता रहा। और उसके बाद मुझे विषय वस्तु प्राप्त हुई, कंटेंट प्राप्त हुआ, मैंने लिखा। और मैं उस समय प्रथम वर्ष में था, BA हिंदी प्रथम वर्ष, साल में 1999 की बात कर रहा हूँ, 1999। मैंने सोचा अरे कविता मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो कोई बात नहीं, लिख कर भेजते हैं। भेज दिया, तब मुझे पता चला अब इसका पाठ मुझे करना है, कविता पाठ, और वो भी 300 लोगों के सामने। तो कैसे भी करके प्रतियोगिता के दिन मैं गया और बहुत ही बुलंद आवाज़ में कविता पाठ मैंने किया। और हैरानी की बात यह है कि उस प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, फर्स्ट प्राइज। और मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये सब आपकी बदौलत है, आपके कारण हुआ ये सब। तो वहाँ से शुरू हुई यात्रा, वहाँ से शुरू हुई। अब कविता देखिए, जब तक आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, ऐसा होता है मॉरिशस में खासकर नवोदित कवियों के साथ, आप लिखते नहीं हैं। जब प्रोत्साहन मिलता है तब हम लिखते हैं। ऐसे ही कुछ लघु कथाएं, तब उसके बाद नाटक की बारी आई, और यहाँ पर विशेषकर हम नाटक के बारे में ही बात करने हैं। नाटक वो भी मैंने BA में पहली बार एक नाटक लिखा था, बहुत ही छोटा सा, उसी कंटेंट को, उसी विषय वस्तु को मैंने विस्तार दिया जब मैंने अतृप्ति शीर्षक नाटक लिखा। और ये कैसे मैं प्रोत्साहित हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है। श्रोताओं जो आप हमें सुन रहे हैं अभी, इससे मैं सोचता हूँ कि आप लोग प्रोत्साहित होंगे। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था, तो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी मेरे सामने आया और बहुत ही परेशान था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप सभी लोग परिचित हैं, सितोहल जी। अच्छा, राजेश्वर सितोहल जी सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, अभिनय बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वे मेरे सामने हैं, मेरे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, बैठे। उन्होंने कहा गुरुजी आपसे हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा कैसी मदद, क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? तो उन्होंने कहा हमारी टोली जो है वाकवा रंगमंच, वहाँ पर उसकी ओर से हमें एक प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो हमें एक कहानी चाहिए, एक नाटक चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मैंने कहा नाटक मैं तो अच्छी तरह से लिखता नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा गुरुजी सोचने का समय नहीं है, आप कुछ लिखिए हमारे लिए और हम लोग अभिनय करेंगे, उसमें आपको भी साथ में ले सकते हैं। मैंने कहा अभिनय तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ लिख सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके पास 2 सप्ताह हैं। तो मैंने कहा इतना ही? उसने कहा देखिए आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो मैंने कहा ओके, मैं कोशिश करता हूँ। अब उसके बाद उसने फ़ोन करना शुरू किया रात को, गुरुजी कहाँ तक पहुँचे, पहली ही रात के कहाँ तक पहुँचे, हाँ क्या हुआ? तो मैंने कहा अभी तो मैं सोच रहा हूँ,
1: घर से निकले नहीं।
0: अब तब मैंने कहा चिंता मत करो, देखो मुझे 2 दिन दो, 2 दिन में मैं एक ड्राफ्ट करके तुम्हें भेजता हूँ। और कैसे भी करके मैंने सितोहल के बारे में सोचा, राजेश्वर, मैंने कहा बहुत ही कीन है और बहुत ही उत्साही है, तो उसके लिए कुछ करता हूँ। 2 रात में बैठकर लगभग मैंने 20-25 पृष्ठ लिखे, और उसमें मेरे

0: कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प, जैसे ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, वैज्ञानिक, माया, प्रदूषण, मनुष्य, ये सब मेरे पात्र थे उस नाटक के लिए। और मैंने 20-25 पृष्ठ लिखे और उसके सामने मैंने नाटक रखा 3 दिन के बाद, और वो बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा, गुरुजी अब मैं अपने पात्रों को ढूंढूंगा और इस पर मंचन करूंगा। तब वो कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया, नाटक तो मैंने दे दिया। तब एकाएक मुझे उसने बताया कि गुरुजी हम लोग फाइनल में चले गए हैं इस नाटक को लेकर। तो मुझे तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये फाइनल में भी चला गया। ओके, और जब मैं वहाँ पर गया और जिस प्रकार से आदर्श ने उस नाटक को सजाया, मतलब रंगमंच की दृष्टि से, वेशभूषा की दृष्टि से, पात्रों की दृष्टि से, एकदम आकर्षक ढंग से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको आश्चर्य होगा कि अंत में जब रिजल्ट आया तो हमें 6 अवार्ड्स मिले, 6 अवार्ड्स उस नाटक के लिए अतृप्ति। और साल 2018 में वह नाटक राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया।
1: बहुत सुंदर बधाई आपको।
0: और उसमें मैंने एक पात्र रखा था प्रदूषण, उसके लिए मैंने सिर्फ 2-3 डायलॉग्स ही संवाद रखे थे। ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश्वर ने उस प्रदूषण को, नामक पात्र को, इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि उसको बेस्ट जूरी अवार्ड मिला। और सिर्फ लगभग 4 या 5 संवाद ही थे उसके लिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण, मतलब पोल्यूशन, उसको जैसे चित्रित किया राजेश्वर ने, ये उसकी उसकी दृष्टि है, कल्पना शक्ति है,
1: एक निर्देशक का
0: काम है कि जैसे पीछे से वो पत्ते उड़ रहे हैं, धुआं, वायु प्रदूषित है एक प्रकार से, और एक पात्र निकल कर आता है जो एकदम काली लिवास में, वेशभूषा उसका एकदम काला डॉक, वो जब सामने आया तो श्रोता, दर्शक ताली बजाने लगे और कहा वाह, और उसी को बेस्ट जूरी अवार्ड मिला। तो मैं ही आश्चर्यचकित रह गया। मैं सोचा, देखा, देखो राजेश्वर ने एक प्रकार से, उसने मुझे प्रोत्साहित किया नाटक लिखने के लिए, और जब मैंने लिखा तुम और फर्स्ट प्राइज मिल गया तो मुझे लगा कि अरे कुछ तो है, और क्यों ना और लिखा जाए उसके बाद। जी हाँ,
1: तो ये अतृप्ति नाटक जो अभी मेरे हाथ में है, आपका लिखा हुआ है, आपने कहा कि 2 रातों में आपने पूरी कर दी।
0: 2-3 रातों में।
1: जी, मतलब आप सोए नहीं उस समय।
0: मैं एकदम उस नाटक में लीन हो गया। जी हाँ।
1: जब आप लिख रहे थे नाटक को, आपने कभी सोचा है कि इस पात्र को कौन निभा सकता है, या फिर कौन निभाएगा, या फिर मॉरिशस में ऐसे कलाकार मिलेंगे, या फिर आपने बस अपनी कल्पना की दुनिया से निकाल के अपने कागज
0: उस
1: में
0: समय तो मुझे पता नहीं था कि इसका अभिनय कौन करेगा इन पात्रों का, लेकिन राजेश्वर सितोहल वो सोच लेता है। तो इसमें और एक शुरुआत में एक पात्र है, शिक्षक, उन्होंने कहा गुरुजी ये इस रोल को आप ही निभा सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने कहा देखो राजेश्वर मेरे पास अभी समय नहीं है, और सचमुच उस समय बहुत काम था तो समय नहीं था, और ड्रामा के लिए आपको पता है बहुत समय देना चाहिए। तब उन्होंने लेकिन एक शिक्षक को ढूंढा, और जब मैं उसको देखने गया, मंचन को देखने गया, नाटक को देखने गया, तो मैंने कहा अरे दिस इज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर, यही उस पात्र के लिए एकदम सार्थक, रेलेवेंट है। और आपको जानकर वो भी आश्चर्य होगा कौन थे उसमें, जय दाऊ सिंह जी,
1: अरे
0: हमारे लेक्चरर जी, उनको लिया गया और बहुत ही अच्छी तरह से उस भूमिका को निभाया उन्होंने।
1: आपकी भावनाओं के अंदर, आपकी भावनाओं की दुनिया में हम जाना चाहेंगे। जब एक लेखक के रूप में आप नाटक लिख रहे हैं, तो नाटक अभी पेपर में है, कागज में है, वही नाटक को आप मंच पर देख रहे हैं, तो एक लेखक के रूप में आपको कैसा महसूस होता है?
0: मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि देखिए ये जो नाटक है अतृप्ति, इसमें जो शिक्षक है, जो जैसे मैंने अभी अभी कहा, ये नाटक उसके दिमाग में चलता है। यही बात जब मैंने राजेश्वर से कहा कि देखो ये मंचन जो हो रहा है एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, एक नाटक अभिनय वहां होगा, और उसको तुम्हें लेकर स्टेज पर लाना है, मंच पर लाना है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्या कर सकते हो?

उन्होंने कहा आप लिख कर मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। और इस नाटक की शुरुआत, इसका आरंभ ऐसे हुआ कि मंच पर एक शिक्षक जैसे पलंग पर सोया हुआ है और वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि संसार का क्या हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं ना, लोभः पापस्य कारणम्, लोभ ही पाप का कारण है। सभी लोग एक प्रकार से लोभी हो गए हैं,

0: मन में चल रहा है, और बाद में कौन कौन से पात्र आ रहे हैं, ज्ञान जो बहुत ही विद्वान है, इंटेलिजेंट है, वो उस समय मंत्रोच्चारण कर रहा है, ऐसे शुरू होता है नाटक, और उसके बाद विज्ञान ये सब कैरेक्टर्स आते हैं।
1: अच्छा, आप कैरेक्टर्स में आप चले गए, तो चलिए अगर संक्षिप्त रूप में जी, नाटक की कहानी को आप बता सकते हैं कि नाटक किस पर आधारित है, कौन कौन से पात्र हैं।
0: तो यहाँ पर रितेश जी जो सूत्रधार है उसकी जो उक्तियां हैं, जो वाक्य है, मैं बताना चाहूंगा अभी। वो कहता है, ईश्वर की रचना की श्रेष्ठतम रचना है मानव, मानव ही पूरे संसार पर राज करने वाला एकमात्र शक्ति संपन्न प्राणी है। उसकी शक्ति का रहस्य है उसकी बुद्धि, उसका दिमाग। मनुष्य के दिमाग में अनगिनत विचार, भाव आदि उत्पन्न होते रहते हैं। ये विचार क्यों मन में आते रहते हैं, मन में इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है, इच्छाएं असीमित क्यों होती है। जब मनुष्य कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी उसे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कुछ और प्राप्त करना शेष है, ऐसी भावना मन में क्यों पैदा होती है, प्रश्नात्मक है। क्या इस पर हमने विचार किया है कभी, कुछ पाने के लिए हम किसको क्षति पहुंचा रहे हैं, क्या इस विषय पर हमने कभी विचार किया है, कारण क्या है, क्या है कारण, क्या कभी इसके बारे में सोचा है। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके बारे में मनुष्य अपने सपनों में ही उन समस्याओं के कारणों तथा उनके समाधानों पर विचार करने लगता है। ये शिक्षक के दिमाग में ये सब चल रहा है। ऐसे ही एक शिक्षक हमारे मध्य में उपस्थित है, सो रहे हैं, स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं, अर्थात सपना देख रहे हैं। आइए चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि उसके सपने में वह क्या देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब वहां पर अन्य पात्र आते हैं, जैसे ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति। प्रकृति कैसे अभी प्रदूषित है, क्या क्या सह रही है, इनके बारे में भी चर्चा।
1: तो आपके आपके नाटक का मूल संदेश क्या है?
0: मूल संदेश यह है कि एक व्यक्ति को कहा गया ना, संतोषम परमम सुखम, कि एक आदमी यदि संतुष्ट हो जितना है उसके पास, और तभी वह सुखी रह सकता है। आजकल समस्या क्या है कि हम लोग बहुत ही असंतुष्ट हैं, किसी भी क्षेत्र को लेकर, किसी भी फील्ड में असंतुष्ट बहुत है। किसी को पदोन्नति नहीं प्राप्त हो रही है, किसी की सैलरी बढ़ नहीं रही है, कोई अक्सर बीमार रहता है, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए पैसे गंवाता है दवाइयों ये सब पर, मतलब असंतुष्टि है। वो नहीं सोच रहा है कि खुद कैसे स्वस्थ रह सकता है, क्या अगर मन में शांति हो तो सभी लोग खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो संदेश यह है इस नाटक का कि यदि हम संतुष्ट रहें जो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से है, तब हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही मेन संदेश है इसका।
1: अतृप्ति नाटक को हमने पढ़ा कर रात को, बहुत ही मतलब अपनी दुनिया में जब मैं था तो आपका नाटक हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा हमको। खासतौर पे आजकल के समाज को दर्शाता है, आजकल के समाज में किस तरह से हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है,
0: कुछ
1: छूट
0: रहा है,
1: तो इसको दर्शाता है। आपकी भाषा के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमने पढ़ा तो काफी मतलब गंभीर स्थिति में आ गए कि काफी संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग आपने किया।
0: जी देखिए, मैं संस्कृत क्षेत्र से हूँ और संस्कृत निष्ठ भाषा में विश्वास करता हूँ, और ऐसी भाषा में लगभग मैं अपनी लघु कथा, कविता ये सब लिखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो इसीलिए आप देखेंगे टाइटल ही जो है शीर्षक अतृप्ति, यही संस्कृत निष्ठ है।
1: तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के साथ आगे बढ़ते, कहीं ना कहीं जो कई लोग जो है वो उन लोगों को मौका नहीं मिला है संस्कृत पढ़ने के लिए, तो उन लोगों की सुविधा के लिए आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया ताकि वे भी समझ सके।
0: जी हाँ, देखिए ये यह जो नाटक है इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग तो मैंने किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जैसे संतोषम परमम सुखम, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और आसानी से आप पकड़ सकते हैं इसको, इसका अर्थ आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब जब नाटक का मंचन हो रहा है वहाँ पर, तो सूत्रधार कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो बोलचाल की भाषा आराम से जो जनता समझ सकती है ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो

0: इसमें एक मिक्स मतलब दो तीन भाषाओं का जैसे प्रयोग हुआ है, जो बोलचाल की हो, संस्कृत निष्ठ हो, इस प्रकार से। तो सबको साथ में लेकर देखिए, जब एक कंपटीशन में हम भाग लेते हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हम बहुत बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संस्कृत निष्ठ शब्दों का नहीं कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जज जो होते हैं ये सब देखते हैं, अरे ये ऐसा शब्द है, परिनिष्ठ है, इसका परिष्कार हुआ है, परिमार्जित शब्द हैं, ये सब देखते हैं। तो मैंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इस नाटक का निर्माण किया, इसकी रचना की, कि सभी दृष्टियों से ये परफेक्ट लगे, एक सर्वोच्च कृति लगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: बहुत ही सुंदर है। कोई भी लेखक किसी भी रचना को जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं यह विचार किसी स्रोत से आया है।
0: जी जी जी।
1: तो इस नाटक को लिखने के लिए इसका विचार कहाँ से आया है?
0: इसका विचार अभी अभी जैसे मैंने कहा संस्कृत श्लोक ही से आया। जैसे अभी मैंने बोला ना संतोषम परमम सुखम, यह जब मैं बीए कर रहा था तो एक लेक्चरर ने ये मुझे बोला था यह वाक्य, यह उक्ति कि संतोषम परमम सुखम, तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया, यह बात बैठ गई। और मैंने सोचा कि कभी ना कभी, चाहे वो कविता हो, लघु कथा हो या कोई नाटक हो, इसका प्रयोग मैं करूँगा। लेकिन उसके लिए पात्र तो होने चाहिए और कल्पना शक्ति होनी चाहिए और विषय वस्तु होने चाहिए और इसको निभाने के लिए राजेश्वर जैसे पात्र भी होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और मैं बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। देखिए जैसे मैंने भरत मुनि, आप तो जानते ही हैं भरत मुनि, वही नाटक के उन्होंने शुरुआत की, नाटक का प्रारंभ उन्होंने किया, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। अब नाट्य शास्त्र में देखिए नाटक को पंचम वेद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब क्यों पंचम वेद, इसके पीछे भी एक कारण है। ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस ग्रहण करके नाट्य वेद की रचना हुई, नाट्य शास्त्र की रचना हुई। अब सोचिए ये पंचम वेद कहलाता है, इतना महत्वपूर्ण है। और नाटक के माध्यम से हम अपने सुख दुख प्रसन्नता कुछ भी सफलता सबको प्रेषित कर सकते हैं। आगे भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि जी के अनुसार नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा उपदेश और मनोरंजन तीनों का माध्यम है। इसके अलावा देखिए संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकातानाम तपस्विनाम विश्राम जननम लोके नाट्यम एतद् भविष्यति। अर्थात दुख थकान और शोक से पीड़ित लोगों के लिए नाटक संसार में दुनिया में विश्राम और मानसिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई ज्ञान शिल्प विद्या कला योग अथवा कर्म नहीं है जो नाटक में किसी न किसी रूप में दिखाई न देता हो। इसीलिए नाटक जीवन का समग्र प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन कहलाता है।
1: बहुत ही सुंदर है। आप एक लेखक हैं, नाटक लिखते हैं, अभी आपने दो नाटक लिख चुके हैं, अतृप्ति नाटक और रावण लीला। रावण लीला के बारे में जरूर बात करें, वे भी मंच पर गए।
0: हाँ, वो भी साल 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त किया,
1: दोनों नाटक
0: कंसेक्यूटिवली। यस,
1: अतृप्ति नाटक और रावण लीला नाटक। तो आप एक लेखक होने के नाते यह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोई भी निर्देशक का कोई भी नाटक को लेता है तो जरूरी है कि निर्देशक जो है एक बार बैठ जाए लेखक के साथ और बातचीत करे कि आपके लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, आपका क्या विचार क्या था। ये जरूरी होता है,
0: ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि नाटक प्रभावपूर्ण है या नहीं और नाटक का प्रभाव श्रोताओं पर पड़ेगा या नहीं। अगर नाटक उसका उद्देश्य जो है फीका पड़ जाता है, मतलब उसमें वो संदेशात्मक नहीं होता है, शिक्षाप्रद नहीं होता है, तो जनता पर, श्रोता पर या दर्शक पर उसका असर बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना, सोद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तब जाकर वह जनता पर असर करेगा। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि प्रक्रिया

0: स्थिति को हानि पहुंच रही है, तो सभी लोग इससे परिचित है और हमें क्या करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम एक अभियान भी ला रहे हैं नाटक के माध्यम से कि हमें प्रकृति को देखना है, उसकी सुरक्षा करनी है, देखरेख करनी है, तो ये नाटक के माध्यम से। अब हमें मानसिक आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उस नाटक के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं कि अगर अच्छे काम करोगे, सुकर्म करोगे, तो तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब ज्ञान विज्ञान ये सब पात्र है। ज्ञान क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है? विज्ञान ने प्रगति की, लेकिन इसमें मैंने चर्चा की है नागासाकी और हिरोशिमा का क्या हुआ, ये विज्ञान से ही हुआ ये सब, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बम फटे वहां पर, ये सब हुआ। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आज विज्ञान के कारण हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं जो विदेश गए हैं उनसे बात कर सकते हैं, और जैसे बोलते हैं ना वसुधैव कुटुम्बकम, ग्लोबलाइजेशन, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह जो बात है, यह जो श्लोक है, वो कैसे सार्थक हुआ? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और हम संस्कृत में ये बहुत साल पहले ही बोल चुके हैं। तो ये सब बातें नाटक के माध्यम से हम प्रेषित करते हैं जनता के सामने।
1: तो आप, देते हैं। आपने कहा कि जरूरी होता है कि एक निर्देशक लेखक के साथ बैठे और
0: विचारों का आदान प्रदान करें।
1: बिल्कुल जी। आप एक प्राध्यापक भी है, साहित्य पढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि अगर मैं कोई भारतीय लेखक का नाटक लूं,
0: जी
1: अभी मुलाकात तो नहीं होगी, तो उस स्थिति में मुझे क्या करना है, एक निर्देशक को क्या, हाँ निर्देशक को क्या करना है?
0: अब जैसे मान लीजिए मोहन राकेश का आधे अधूरे लेते हैं, भारतीय साहित्यकार है, नाटककार है। अब एक निर्देशक को सिर्फ वो नाटक लेकर उसका मंचन नहीं करना, पृष्ठभूमि में जाना है, मतलब उसका बैकग्राउंड स्टडी भी करना है। पर मोहन राकेश के उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या संदेश लाना चाहता है अपने नाटक के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। मोहन राकेश के बारे में व्यक्तित्व और कृतित्व जैसे बोलते हैं, उनके बारे में पढ़िए। और जब मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ साक्षात्कार इंटरव्यूज दिए हैं आधे अधूरे के बारे में, तो वो जाकर थोड़ा सुनिए, पता लगाइए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या संदेश लाना चाह रहे हैं इस नाटक के माध्यम से, अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से। ये सब थोड़ा ग्राउंड वर्क जैसे बोलते हैं ना करना चाहिए, तब जाकर निर्देशक समझेगा कि वो कैसे उस नाटक को प्रस्तुत करेगा। ये बहुत ही आवश्यक है,
1: क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे श्रोता फिर दर्शक देख रहे हो, सुन रहे हैं, वे भी नाटक करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है कि हम भारतीय लेखकों के नाटक लें, ठीक है, लेकिन वे तो वहां पे बैठे हो या फिर कई मतलब स्वर्गवासी हो गए हैं, तो जैसे आपने कहा कि उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, लेखक को जानना चाहिए
0: जी
1: उनके नाटक को लेने से पहले।
0: प्रीतिश जिसमें कुछ मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए इसी नाटक में अतृप्ति जो मेरा नाटक है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम है माया। तो ये माया मेरे दिमाग में, इस पात्र की रचना, पात्र की रचना कैसे हुई, मैंने फिलोसोफी भी पढ़ी है
1: इसके बारे में, जरूर बात करेंगे। मेरा एक बहुत ही खास प्रश्न है इनको लेकर, क्योंकि माया बहुत ही दिलचस्प पात्र है। तो अभी के लिए एक लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अवश्य।

0: स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम, सुन रहे हैं हमें, और इस कार्यक्रम के जरिए आप को नाटक के बारे में बात करें। हमारे साथ है विश्वानंद पतिया जी। आप एक प्राध्यापक, संस्कृत प्राध्यापक है, और आप एक नाटककार है, नाटक लिखते हैं, साहित्यकार है पूर्ण रूप से। हम बात कर रहे थे आपकी अतृप्ति नाटक, जिसका मंचन हुआ और पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो अतृप्ति नाटक लिखते समय आपने कहा कि 2-3 रातों में आप अपने नाटक लिखा है। नाटक लिखते समय एक लेखक को कौन कौन सी बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है?
1: जी हाँ, सबसे पहले तो आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब उसका प्लॉट, कंटेंट, ये ध्यान में रखना है। और किन किन पात्रों का उसमें आप चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, इनके बारे में भी। और उसके बाद आता है वेशभूषा। वेशभूषा के बारे में भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो पात्र हैं कैसे दिखेंगे, क्या पहनावा उनका उनका, ये सब। अब देखिए, नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रमुख प्रकार भी माने गए हैं। अब आंगिक अभिनय है। आंगिक अभिनय में हम शरीर, हाथ, मुख और नेत्रों की चेष्टाओं के बारे में विचार करते हैं। तब आता है वाचिक अभिनय, संवाद, उच्चारण, स्वर और भाषा। तब आता है आहार्य अभिनय, और इसमें आता है वेशभूषा, आभूषण, रंग सज्जा आदि। और अंतिम है सात्विक अभिनय, इसमें आता है, इसका अर्थ है आंतरिक

0: भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति जैसे रोमांच, अश्रु, स्वर भंग आदि। तो इन सब बातों में विशेषतः हम चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं। और जैसे मैंने पूर्व में कहा था, उद्देश्य नाटक लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है, जैसे बोलते हैं, अगर हम उसको पा रहे हैं, तब आपका नाटक सफल है, चाहे वो छोटा ही नाटक क्यों ना हो या बहुत विस्तृत नाटक। लेकिन अगर सोद्देश्य है, तब मतलब आपका नाटक एकदम सफल हो जाता है।
1: नाटक, आपका नाटक हमने पढ़ा तो बहुत सारे पात्र है इसमें, काल्पनिक, खास तौर पे काल्पनिक पात्र है, और कई नाटक जो है वो एक पात्रीय नाटक होते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो इसके बारे में हम आपसे, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो लिखते समय मुश्किलें नहीं होती है, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है एक पात्रीय नाटक और अनेक पात्रीय नाटकों में?
0: जी हाँ, जब एक पात्र होता है तब उसमें हम उसके विचारों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, मतलब वो कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा, और जब वह प्रसन्न होगा तो उसके संवाद कैसे होंगे, जब दुखी होगा तो उसके संवाद कैसे होंगे, और जब मान लीजिए किसी से मिल रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक मनुष्य के बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, तो उसके अनुरूप एक पात्र, मान लीजिए एक पात्र ही नाटक उसी में उसका मंचन हो रहा है, तो ये सब बातें हम सोचेंगे। और यदि बहुत सारे पात्र हों तब संवाद की ओर ध्यान देंगे, जैसे ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, तो उसकी भाषा अलग होगी, जैसे पूर्ण संस्कृत निष्ठ। अब जब हम विज्ञान को ले रहे हैं तो विज्ञान में थोड़ा हम मिक्स कर सकते हैं। ओके, अब आ रहा है, जैसे याद है एक पात्रा की चर्चा हमने की थी, जिक्र किया था, वो है माया। तो माया में ज्यादातर मैंने दर्शन से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे स्नेक इन रोप, सांप में ही हमें रस्सी दिखाई दे रही है, रस्सी में मतलब सांप। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ी फिलोसोफी है, स्नेक इन रोप जैसे बोलते हैं। तो ये माया चरित्र का जब मैंने उद्घाटन किया, जब उसके बारे में मैंने लिखा, तो ये सब बातें उसमें आ गई, तो ये सब आवश्यक है।
1: तो आपकी कहानी को जब हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, आपने अंटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट दोनों को लिया, मतलब एक्टर और विलेन दोनों को लिया। हाँ, हाँ। एक तरफ से तो प्रदूषण, नायक खलनायक, तो खलनायक तो प्रदूषण के रूप में आता है, और नायक जो है वो प्रकृति है,
0: थोड़ा विज्ञान में भी आ जाता है, क्योंकि उसमें हानि भी है, उसमें हानि और लाभ भी है।
1: अंटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट के बीच को दोनों को लेकर कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन ये जो आपने पात्र का उसका प्रवेश करवाया, वह माया नहीं, माया माया के बारे में हम जाना है, माया का पात्र कैसा है, किस तरह से आता है, क्या उसका क्या रोल होता है, दो एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट के बीच में उसका क्या स्थान होता
0: है? देखिए, दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति आती है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसमें बताया गया है कि जो जगत है, जो संसार है, वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि इसके पीछे माया कार्यरत है। माया के कारण हमें लगता है कि यह संसार एकदम क्या है, एकदम
1: मिथ्या है,
0: मिथ्या है। मिथ्या मतलब इल्यूजरी है। क्यों? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान, अब मेरे कहने का उद्देश्य इसमें, माया चरित्र को जब मैंने लिया, इस पात्रा को मैंने लिया, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, वे सोचते हैं यह दुनिया मेरी है, यह घर मेरा है, मैं अमर हूं, ऐसा सोचते हैं। और वे लोग बहुत कुछ इच्छाएं रखते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, माया के फेर में फंस जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं। और उनको, अगर उनको ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, अगर यही बात, इसी बात का ज्ञान उन्हें हो जाए, तो वे संतोषम परमम सुखम की ओर जाएंगे। मतलब जो है थोड़ा सा उनको पर्याप्त है। ओके, अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए, मैं जितना है मेरे पास, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, तो उसको अतृप्ति के अंतर्गत नहीं लाएंगे हम, ठीक है, उसको हम लाएंगे महत्वाकांक्षी के अंतर्गत। महत्वाकांक्षी का मतलब है जो लोग अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है एम्बिशियस, वो अलग बात है, और संतुष्ट रहना वो अलग बात है। ये समझना चाहिए। ये भी मैंने अपने नाटक में समझाने

0: का प्रयास किया है। महत्वाकांक्षी रहो, उन्नति के लिए प्रयास करो, लेकिन जो है तुम्हारे पास उसमें संतुष्ट भी रहो। तो ये भी नाटक का एक केंद्र बिंदु है।
1: तो माया पात्र जो है वो हाँ। किस तरह का, वो पॉजिटिव साइड का है या फिर निगेटिव साइड या पात्र?
0: इसमें थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा सा नकारात्मक है ये, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से मनुष्य मायाजाल में फंस जाते हैं। तो उनको फंसना नहीं है मायाजाल में, और मैं ये भी बताना चाह रहा था कि कैसे माया आकर एक व्यक्ति के मन में जब बैठता है, कि दिमाग को घेर लेता है, तो वह व्यक्ति गलत रास्ते पर भी जा सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया हितोपदेश में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक में बताया गया है बुद्धिमान और मूर्ख में क्या अंतर है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वे लोग सभी जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं, काव्य शास्त्र, उसका अध्ययन करते हैं और उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। जो मूर्ख होते हैं अति निद्रा माया जाल में फंसते हैं और कलह में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, गंवा देते हैं। तो हमें क्या होना, कैसे होना चाहिए? माया जाल में नहीं फंसना है, हमें उससे परे उठना है, ऊपर उठना है, ज्ञानी बनना है, काव्य शास्त्रों का अध्ययन करना है, और तब जाकर हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही है लक्ष्य।
1: बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत कम नाटकों में हम एक फिलोसॉफिकल टच को देख पाते हैं।
0: सब कुछ है, फिलोसॉफी भी है इसमें, शिक्षा भी है, और नया युग जो न्यू मॉडर्न एरा है उसके बारे में, जैसे विज्ञान सब, कंप्यूटर, ये सब, इन सब के बारे में। तो एक मिक्सचर है, अमलगमेशन है, सबको साथ में लेकर मैं चला हूँ। और ये सब कहाँ हो रहा है? दिमाग में, व्यक्ति के दिमाग में। तो आदर्श इसी बात को सुनकर वह बहुत खुश हुआ कि अरे चलो ये थोड़ा अलग है, इस नाटक को इसी विचार ने अलग बना दिया, ये यहाँ चल रहा है और इसको हमने मंच पर रखा, ये अलग बात है।
1: एक लेखक का जब एक नाटक लिखता है तो मतलब उसका वो एक छोटा बच्चा की तरह है,
0: बेबी बच्चा है उसका, उसकी संतान।
1: तो नाटक लिखते समय वो इस बात को भी ध्यान में रखता है कि इस नाटक का मंचन कौन कर सकता है,
0: कौन कर सकता है। एग्जैक्टली। तो देखिए, मैं आदर्श के बारे में उतना नहीं जानता था, मंचन के बारे में, और अभिनय कैसा करता है। जब मैंने इसका मंचन देखा तब मुझे लगा आदर्श ने अभिनय करके इस नाटक को जीवित कर दिया है, इस नाटक में प्राण फूंक दिया है जैसे बोलते हैं। और जब प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो गया, और इसमें जो प्रकृति है उसको भी प्राइज मिला, प्रदूषण, ये सब बहुत सारे इसमें मिले, तो मैंने देखा कि यदि एक अभिनयकर्ता, एक कैरेक्टर अपने शब्दों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से मंच को और श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तभी जाकर नाटक सफल माना जाएगा। तभी मैं प्रेरित हुआ, प्रोत्साहित हुआ, मैंने कहा अरे अगले साल के लिए भी एक दूसरा नाटक लिखते हैं। तभी मैंने रावण लीला भी लिखा।
1: नाटक में लेखन
0: जी,
1: नाटक की आत्मा होती है
0: जी जी जी, शब्द,
1: शब्द
0: जी। तो
1: क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी नाटक के बारे में, हिंदी नाटक, भोजपुरी नाटक के बारे में, तो उसका स्रोत है संस्कृत नाटक,
0: संस्कृत नाटक जी,
1: और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिखा हुआ
0: जी जी जी।
1: आप एक संस्कृत प्राध्यापक है
0: जी,
1: तो एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे, संस्कृत नाटक और हिंदी नाटक और उसको चलते यह यात्रा चलती है आज के नाटक, फर्क क्या है?
0: फर्क क्या है?
1: शुरुआत करते हैं संस्कृत नाटक से।
0: अब जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है, और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें नाटक शब्द ही को समझना चाहिए। नाटक शब्द नट, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। नट, नट का अर्थ क्या है? नट का अर्थ है नाचना, अभिनय करना, हाव भाव करना, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपने विचारों का आदान प्रदान करना नाच कर, भंगिमाओं के माध्यम से। तो नाटक जो है वो मनुष्य की उत्पत्ति जब से हुई तब से आदमी नाटक कर रहा है। मैं ऐसा कहूंगा, ये आप संस्कृत भूल जाए, संस्कृत साहित्य भूल जाए, जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से वो हंस रहा है, ये एक भंगिमा है, एक

0: डिप्रेशन है, वो क्रोधित है, नवरस जिसे बोलते हैं, ये सब हमारे जीवन में होता रहता है। अभी मान लीजिए मैं आपको डांट दूं तो आप नाराज हो जाएंगे, आपने मुझे कहा अरे आपने प्रथम स्थान पर, मैं खुश हो जाऊंगा, क्या हुआ? यही सब भाव भंगिमा है, यही सब हाव भाव है। तो जब से मानव की सृष्टि हुई, नाटक एक प्रकार से शुरू हो गया। अब आपने चर्चा की संस्कृत साहित्य की, तो संस्कृत साहित्य में मैंने जहां तक पढ़ा है, ठीक है, वहां अब संस्कृत है ना, तो संस्कृत के माध्यम से बहुत सारे नाटक लिखे गए। जिससे मैं प्रभावित हुआ वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की का अभिज्ञान शाकुंतलम। वो अपने आप में अद्भुत है और उससे पाश्चात्य साहित्यकार भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा अरे कालिदास जैसे इतने महान श्रेष्ठ रचनाकार भारत में हुए, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और कल्पना शक्ति कालिदास की जब उन्होंने वहाँ पर देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गई। तो वहाँ से मतलब बहुत ही परिष्कृत रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि, वहाँ से जब ऐसे नाटक की यात्रा चलती हुई बढ़ी, तब इधर आकर अब मध्यकालीन में और अभी मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में बहुत सारे नाटक हुए। अब उसके बाद वो एकांकी इत्यादि, लघु कथा, ये सब बहुत सारी विधाएं सामने आ गई। तो कहने का यह मतलब है कि उस जमाने में जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए, संस्कृत साहित्यकार, उनकी कल्पना अलग थी और उन्होंने उस समय में जो समस्याएं थी उसको लेकर उन्होंने अपनी नाटक की रचना की। और आधुनिक संदर्भ में जैसे मैंने मोहन राकेश का उनकी चर्चा की, वो आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, उनको लेकर उन्होंने अपने नाटक लिखे।
1: पहले संस्कृत नाटक में विषय वस्तु क्या है?
0: विषय वस्तु जैसे राजा रानी, ठीक है, मंत्री, ये सब, और तपस्या, ठीक है, साधु संत। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम ही में अंगूठी गुम हो गई, ठीक है, अंगूठी जब मिली उसको शाकुंतला को, तब उसको सब कुछ याद आया। थोड़ा काल्पनिक ज्यादा कल्पना, लेकिन बहुत सारी सीखें भी थी, ज्ञान संबंधी,
1: दार्शनिक तत्व भी थे।
0: जी
1: हाँ, वहीं से आप प्रभावित हुए।
0: एग्जैक्टली जी, बिल्कुल।
1: कालिदास के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए एक साझा कर लेते हैं हास्य के रूप में, लेकिन रोचक है
0: जी,
1: क्योंकि उनके मेघदूत नाटक, मेघदूत को हम ट्रांसलेट करेंगे, मेघ का मतलब क्लाउड, दूत का मतलब है मैसेंजर, तो आज के जमाने को दर्शाता है क्लाउड्स और मैसेंजर,
0: और उससे संबंधित बहुत सारे गाने भी है। मेघ, मेघार, ये सब बहुत सारे, मेघ और चिट्ठी, ये सब जैसे कबूतर तो कहाँ से, हवा में से उड़ते हुए संदेश भेज रहे हैं, तो हवा से संबंधित बहुत सारे गाने हैं, मेघ से, मेघारे मेघारे, ये सब गाने हैं ना, तो बहुत प्रभावित हुए आज के संगीतकार भी। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, आपको तो पता ही है जावेद अख्तर साहब, वे भी बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार। तो जब हम कुछ लिखते हैं सृजनात्मक, देखिए नाटक का संबंध रचना से है और रचना हमारे दिमाग में, हमारे विचारों से आती है रचनाएं। अब एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जावेद अख्तर साहब का, तो उनको संगीतकार से मिलना था और डेडलाइन उसी दिन था, मतलब समय सीमा, आज ही उनको एक गीत उनको प्रेषित करना था, देना था उनके हाथ में संगीतकार को, म्यूजिशियन को, और वे गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, कुछ लिखा अभी तक नहीं, और उसी दिन उसको गाना देना है, 3 घंटे बाद जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सब दिमाग में है, दूं तो क्या दूं। और जावेद अख्तर साहब आपको पता है बहुत ही अच्छे संगीतकार, क्या लिखा उन्होंने जाते हुए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे
1: नाचता मोर जैसे
0: रेशम की डोर जैसे परियों का रंग, ऐसे सुने। ये गाना जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ, सबके फेवरेट हो गए, और उसमें कुमार शानू को फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड भी मिला, बेस्ट प्लेबैक
1: लगे हाथ आपको।
0: सुनिए, 2-3 घंटे में उन्होंने ये गीत लिख दिया और जाकर संगीतकार को दे दिया। तो ये है रचना, ये है रचनात्मक शैली, कौशल। कहने का यह मतलब है कि कभी कभी जैसे 2-3 दिन में मैंने नाटक

0: लिख दिया। ये आसान बात नहीं है। अब इसके पीछे क्या है, बोलते हैं ना अंग्रेजी में, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही सृष्टि की जननी है। उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे लिखना ही है, लेकिन लिखो सोच समझकर। ये मैं श्रोताओं को जो लिखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ एक वाक्य बोल रहा हूँ, ये कि आप लिखिए ज़रूर, लेकिन सोचिए समझिए और समय सीमा के अंतर्गत उस काम को कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब समय गया तो नहीं आता। इसीलिए संस्कृत में और एक उक्ति है, शुभस्य शीघ्रम, जो कार्य शुभ हो उसमें देर नहीं करनी चाहिए।
1: कल करे सो आज कर,
0: आज करे सो आज कर,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पल भर में प्रलय भएगी, बहुरी करेगी कब।
1: 1942 एक लव स्टोरी, एक बात को साझा कर लेते हैं। अब निर्देशक की ओर से हम देखते हैं, जब निर्देशक ने इस गाने को लिया तो उसने सोचा कि अनिल कपूर को, क्योंकि हम
0: रचना के बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ, सत्यजीत रे गए थे वहाँ पे, हमारा वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पे, डायरेक्टर से मुलाकात हुई। उन लोगों ने कहा कि किस तरह से डायरेक्टर ने उस गाने को दर्शाया है, चित्रित किया है, तो जहाँ जहाँ पे अभिनेता को गाना था वहां पे काल्पनिक दृश्य रख दिया। क्योंकि आप देखेंगे गाने में, अभी आप जाएंगे YouTube में देखेंगे,
0: हमारे दर्शक भी देखेंगे गाने को,
1: तो अभिनेता साइकिल में जा रहा है
0: जी,
1: अनिल कपूर साइकिल में जा रहा है, जैसे उनको गाना है रुक करके सोच रहा है,
0: सोच रहा है।
1: तो अब लड़की जैसे काल्पनिक दुनिया में नाच रही है, तो बहुत ही सुंदर मिशन था वहां पे।
0: तो जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना, संगीतकार भी और गीतकार भी दोनों साथ में बैठ कर चर्चा करते हैं कि इस गीत को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो वैसे ही मैं भी आदर्श के साथ बैठकर मैंने उसको प्लॉट समझा दिया कि एक शिक्षक हैं, उसके दिमाग में ये सब चल रहा है, पात्र ऐसे आएंगे, प्रदूषण के पीछे उधर थोड़ा काला होगा, ये सब चर्चाएं पहले से कर देनी चाहिए। तब निर्देशक को भी एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे नाटक को और पात्रों को प्रस्तुत किया जाए।
1: आदर्श जब आए आपके साथ, आपके पास, और कहा कि गुरुजी हमारे जो अध्यापक का जो पात्र है आपको ही करना है,
0: जी जी,
1: आपने मना क्यों किया?
0: नहीं, मना इसलिए मैंने किया क्योंकि उस समय समय नहीं था मेरे पास।
1: अच्छा।
0: देखिए, नाटक मंचन के लिए समय देना चाहिए, आप भी तो नाटककार हैं, कलाकार हैं, आपको पता है। मैं भी उसके बाद मैंने किया है उसी के साथ।
1: मैंने क्यों प्रश्न किया, क्योंकि एक और प्रश्न आ रहा है।
0: ओके,
1: आपने कभी भी किसी नाटक में भाग नहीं?
0: नहीं, नहीं, मैंने भाग लिया भाग लिया, और हम दोनों ने साथ में भी भाग लिया है। तो उसके बाद तो प्रोत्साहित हुआ मैंने, कहा अरे, और एक छोटी सी घटना नाटक पर ही, देखिए मैं बोलता हूँ आपको आदर्श। एक दिन ऐसे ही एक गतिविधि चल रही थी MGI में, तो आदर्श आया उसी दिन, मंचन है, एक कैरेक्टर था उस समय इंद्र का कैरेक्टर, वो एक लड़का उसका अभिनय करने वाला था, अनुपस्थित था। और कितने बजे मंचन करना है, 11 बजे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ 9 बजे, आदर्श आया, गुरुजी की सहायता की आवश्यकता है। हाँ बोलिए, मेरा एक पात्र अनुपस्थित है, बीमार है, तो उसकी जगह पर क्या वो रोल आप कर सकते हैं? हाँ, कैसा रोल है, कितने संवाद है उसमें, ये भी बोल जानना चाहिए ना। तो उसने कहा 5 लाइन है हिंदी में, इंद्रदेव का रोल है। तो मैंने कहा ओके, लेकिन बाय हार्ट तो मुझे नहीं आएगा वो संवाद, लेकिन मैं इम्प्रोवाइज करके मैं बोल दूंगा, चल जाएगा ना, काम चलेगा। उसने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए 2 घंटे है मेरे पास, वेशभूषा सब आ गई, मैं इंद्रदेव बन गया और मैंने परफॉर्म किया, अभिनय किया, किसी को कुछ पता नहीं चला।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: किसी को कुछ पता नहीं चला। आप उसको रिकॉर्डिंग भी है MGI में, आप देख लीजिए।
1: मतलब आपकी CV में एक और बिंदु जुड़ गई है कि नाटककार के साथ अभिनेता भी है।
0: उन्होंने, आदर्श ने शायद महिषासुर का रोल किया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, मैंने इंद्र का बहुत ही जोशीले ढंग से।
1: अच्छा विश्वानंद पतिया जी, आप नाटक लिखते हैं, तो एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे, तो आप, आपके हिसाब से आपको कहाँ अच्छा लगता है, नाटक में या फिर नाटक लिखने वाला?
0: देखिए मुझे नाटक में भाग लेकर बहुत अच्छा लगता है, और जब उस रोल में आप एकदम प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, तो एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। लिखना तो ओके, मैंने लिख दिया, एक रचना हो गई, लेकिन जब आप उस पात्र को जीते हैं, तो जो आनंद आपको मिलता है वो अद्भुत, अवर्णनीय है, उसकी

0: हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत सुंदर,
1: बहुत ही सुंदर। तो विश्वानंद पत्या जी,
0: इसलिए मैं श्रोताओं को भी, जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं, आप लोग भी प्रोत्साहित होइए, लिखिए। देखिए हमारे बीच रितेश जी हैं, मैं स्वयं हूँ, हम लिखते हैं। ठीक है, कब, जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तब हम लिखते हैं।
1: लेकिन श्रोताओं
0: से मैं ये मांग करूंगा, जो नवोदित है नाटककार, आप लिखिए, लिखते रहिए, इससे आपका परिष्कार होगा। और यदि आपको कुछ सलाह की आवश्यकता है, सुझाव, तो रितेश जी भी हैं और बहुत सारे नाटककार हैं, जैसे अभी आदर्श भी बहुत अच्छा निदेशक हो गया है। इसके अलावा और मॉरिशस में बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस उनसे भी आप प्रेरित हो सकते हैं, उनसे जाकर सुझाव ले सकते हैं। और शायद रितेश जी आपको भी पता होगा कि कुछ ऐसे कोर्स भी चलाए जा रहे हैं नाटक संबंधी, वहाँ पर भी आप जाकर नाटक सीख सकते हैं।
1: वर्कशॉप भी चलाया जाता है मिनिस्ट्री की ओर से, और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर की ओर से भी बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप चलाए जाते हैं। आप लोग, अगर रुचि है आप लोगों में, तो जरूर इसमें भाग लीजिएगा। एक दुनिया है लेखन से लेकर अभिनय तक, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं रंगमंच की दुनिया के माध्यम से।
0: देखिए श्रोताओं, जीवन एकदम छोटा है, लेकिन अगर आप उसको सुखमय बनाना चाहते हैं तो ऐसी गतिविधियों में भाग लीजिए, रचनाएं कीजिए, नाटक लिखिए, कविताएं लिखिए और अभिनय कीजिए। इससे आप अच्छी तरह से जी भी पाएंगे और यह जो छोटा जीवन है इसको और आनंदमय, सुखमय बना सकते हैं, यह मेरा विचार है।
1: बहुत ही सुंदर। विश्वानंद पत्या जी, आप एमजीआई में काम करते हैं संस्कृत प्राध्यापक के रूप में और नाटककार भी है। आज आपका अतृप्ति नाटक के बारे में हमने चर्चा की है, तो आपका एक दूसरा नाटक है रावण लीला, इसके बारे में बस दो लाइन संक्षिप्त रूप में, कैसी कहानी, कैसी है, फिर अगले कार्यक्रम में जरूर आपको बुलाएंगे।
0: अवश्य। देखिए, सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और अच्छे गुणों से संपन्न है। लेकिन रावण का नाम भी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन कोसते हैं कि अरे रावण ने गलती की, ये किया, सीता का माँ का अपहरण कर लिया, ये सब। लेकिन वे भूल जाते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, वह भी महान संगीतज्ञ था, और उन्होंने भी पहाड़ तक, पर्वत तक उठा दिए और उनको शिव जी का सबसे परम भक्त और डिवोटी माना गया है। इसका मतलब ये है कि यदि उनके जो कुव्यवहार है, जो उन्होंने गलत काम किया, उसको हटाकर यदि हम उनके गुणों पर थोड़ी चर्चा करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो रावण लीला में मैंने इन्हीं सब बातों पर चर्चा की है, जो एक दूसरे प्रोग्राम में
1: बिल्कुल बहुत ही जल्द के बारे में बात करेंगे। तो विश्वानंद जी, आप आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते, आप मिलेंगे। तो का दर्शकगण, श्रोतागण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया, जरूर जुड़ते रहिए हमारे साथ। और अगले कार्यक्रम में एक बार फिर से विश्वानंद जी से बात करेंगे उसके दूसरे नाटक के बारे में। अभी के लिए हमारी ओर से नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: देश विदेश की खबरों को लेकर स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। 18 सालों के बाद पोटली सीट फिर से कार्यरत होने लगेगा। इन कार्यों की वजह से 500 मिलियन रुपए लगे हैं, कुछ देरी हुई है लेकिन कार्य संपन्न होने होंगे। मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कल मेबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए। वहां पर मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ सहायक योजनाओं का उल्लेख किया।

0: ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहिगीर हैं। नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं। विदेश में अमेरिका के कंग्रेशनल बजट ऑफिस ने एक आंकड़ा आम किया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 10 सालों में $40 trillion का हो गया है। ये बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान काफ़ी खर्च किए गए हैं और सूद दर भी बढ़ी है। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज $20 trillion था। तो अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue des Sablons, Grigny, France, में 61 साल के 61 years old, श्री धर्मराज चितामन, जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को उनके घर फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Grigny, France की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन ऑन ट्यूजडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप भी तत्पर हैं। रेडियो मॉरिशस पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ टीवी के तीसरे चैनल पर, एमबीसी टीवी के तीसरे चैनल पर ये प्रोग्राम आप लाइव भी देख सकते हैं। और आज हमारे साथ तकनीक पर फैजन है और प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर है जैनिश। हम सब बिल्कुल तैयार हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है, इम्पोर्टेड सेकंड हैंड काउस की बिक्री और उस पर लागू रेगुलेशंस। जब कोई ग्राहक एक सेकंड हैंड इम्पोर्टेड का या कोई व्हीकल ख़रीदता है तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, डीलर की क्या जिम्मेदारियां हैं अगर गाड़ी में कोई ख़राबी पाए जाते हैं, माइलेज और व्हीकल्स हिस्ट्री को लेकर कोई डाउट है या कोई वैसे शक है तो उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, वो क्या करना चाहे ग्राहक, इन्हीं सवालों के कुछ जवाब पाने के लिए हमारे स्टूडियो में इसी विषय पर हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स के दो ऑफिसर्स स्टूडियो में उपस्थित हैं, श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी और श्री रणवीर सिंह मीटू जी। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और जैसे हम बोल लीजा, हमने सेकंड हैंड कार यानी कि इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार पर जैसी पत्याप तो हम आजकल के दौर देखी ला जा कि अगर एगो व्यक्ति एगो अच्छा गाड़ी किने चाहता तो जैसे जे आप ओके कौन सा देबा।
2: आज के जो टाइटल है इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार, उसका मतलब क्या है इम्पोर्टेड सेकंड हैंड का, जैसे सब लोग जाने ला रिकंडीशन, लोटो रिकॉन। ताजा आज लोटो रिकॉन पे बात करब सर। लोटो रिकॉन देखिला सब ढेर शोरूम बाते जो लोटो इम्पोर्टे करेला। रिकॉन का बोला जाला हाई लोटो वन दोरिजिन नया नहीं बाते, नवा नहीं बाते, लोटो वन दूसर देश में चलल बाते ओकर मिलास मोटे होल बा, तब लोटोआ के फिर से बना के वो सब जे देफो सब रही था सब ठीक ठाक करके तब इम्पोर्टे होला। लोटो रिकंडीशन जब इम्पोर्टे होला तो ट्रेडर लोग जाने ला लोग के बाद कंडीशन जो रेस्पेक्टे करके जो हम के मिनिस्टर बा ट्रेड सेक्शन वो पीएमई इम्पोर्टेशन दे वेला। अब आज हम ग्राहक के हित में बात करब सर, ग्राहक के
0: अधिकार उन लोगों के हाइड राइट्स जैसे पर
2: लोग जान सर लोटो शोरूम में देखे तो तीन चीज के चाहेला ध्यान में रखे के लोटोआ के घाट कौन घाट हते एगो

0: ट्रेडिंग बातें जो सकअप सब ले आ बे से दे एगो घाट बातें सब लुटो के चाइना देखे के और ये ओकर ऑक्शन सर्टिफिकेट वो चाइना देखे के और ओकर देखे के चाइना ओकर कंडीशन वो सब और ये प्री बियन श्योर प्री चाइना देखे के इन तीन गो चीजों शोरूम लोग चाइना अफिशे करके जब उबिया आफ कब अफिशे नहीं होकर ले उनसा तब पापी हुआ बातें जब एगो ग्राहक जाए देखिए गो लुटो जैसे हाई लुटो आवा ओके पसंद पर रहता तो चाइना पूछे के एक लुटवा के घाट मिलास ओकर सब चीज फिटनेस सब देखे के चाइना
1: तो गाड़ी के खरीद मतलब खरीदारी खातिर एक व्यक्ति के कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहेला आने के
2: जैसे जाना सर हम इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड गाड़ी की बचाते हैं सब अच्छा जाने के कौन लालो कि जी रिसी करे लाए जैसे हम के कंज्यूमर प्रोटेक्शन बा इम्पोर्टेशन और सेल्स एंड सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल बा रेगुलेशन दे मिल काट की है उमें बोलेला कैसे बिजनेस है या जो जो व्यापारी है जो ऑथोराइज डीलर है कौन कौन कंडीशन में चाहे ला और के पी एम ई रह के एगो एगो जाफे चला एगो डिमार्केशन करा था हमने के दू हमने कौन सी माफ है सर एक बार ट्रेड डिवीजन में लोग पी एम ई देवे लंग सर हमने जिस देख ला कौन से माती है कि जैसे बोले ट्रेड डिवीजन वो देवेला इम्पोर्ट परमिट देवेला कौन सी कंडीशन लेके और लोग के लालवा के दौरान से तब वो बोलेला कुछ यहाँ जाने के कुछ बोला जा रहा एगो मोटर व्हीकल आगे कुछ बोल जा सेकंड है मोटर व्हीकल जैसे जाना सर और ट्राफिकाक बोला मोटर व्हीकल बोला जाए एगो एगो मशीन जो सीमा में सर्विस कर बसा जैसा कि पेट्रोल से ताज़ा लाइसेंस रही या डीजल रही ऊ बिया एगो हाइब्रिड रही ऊ एगो इलेक्ट्रिक है मोटर व्हीकल है अब सेकंड हैंड मोटर व्हीकल कुछ बोल जा रहा जो मोटर व्हीकल हुआ हमने के को लालवा बा मोटर व्हीकल वाला कुछ बोल रहा सेकंड हैंड हमने के को लालवा बा पिछले आगे लालवा बा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंट्रोल और इम्पोर्ट है रेगुलेशन दे मिल जिस उमें बोले ला मोटर व्हीकल कौन चाह रहे कि एगो मोटर व्हीकल सेकंड हैंड रहेगा तो बोले जाए रिकंडीशन है यूज है दूसरा पे ही में लुटुआ मासीनुआ से भी करल बा तभी खातिन जैसे हमारे कोलेग बोला एगो घाट पर आवला घाट जैसे हाउ लालवा बोली फिर कंट्रोल इम्पोर्ट बोलेला कि लालवा में बोलेला कि व्हीकल चाहे ला मोटर कॉर है कि 18 मो आ 4 हों के है फूसे तो हमें हम मासीनों के इतना अच्छा लाज रहे के तो आने के ओके चाहे ला ओके मैं चला को डेटा रजिस्ट्रेशन और का शिपमेंट सब कुछ और चला राइट हैंड ड्राइव रहे के लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं राइट हैंड ड्राइव और ये गुड रनिंग कंडीशन रही और ये कंचो वो जिन कहाँ से आवा था कौन पे साला जब लापी पर हमने के व्हीकल था जापान से आवेला तब जापान में कंडीशन आता से है जैसे रेगुलेशन बोली कंट्रोल इम्पोर्ट एगो सेड्यूल बा सैंक आसिस में बोलेला कि ऑक्शन सीट बोला जला चला जाने के ऑक्शन सीट कुछ है और पी एस आई सर्टिफिकेट कुछ है पी एस आई बोला जला प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कुछ है लोग आदमी लोग चाह जाने के ग्राहक लोग कौन चीज है कौन जाफे है कुछ किन होते सब तब जब भाव व्हीकल हुआ जापो में
1: कौन जिसों चाहे ध्यान में रखे कि
2: तो हम बताए जब ऑक्शन सीट रहेला और प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट रहेला और ये लोग चाहना जो घाट दल के हम जैसे बोलते हैं हम जैसे बोलते हैं घाट जैसा बोला अब सर ग्राहक लोग कौन है कुछ है तो खातिर हम तो डेटा में बोला था कौन सी है वो कौन है जो एक बेसिक नॉलेज मिली कौन सी है फेवा जब व्हीकल आवेला जापान से तब ओकर में एगो ऑक्शन सीट रहेला जैसे जानेला एगो व्हीकल जब से अभी होगा डीओ में तो नहीं जानवा किसी से अभी होगा तब हुआ से आवेला एगो बीडिंग में ऑक्शन है बोल देला आवेला तब कंपनी के नाम सब रहेला कुछ बा व्हीकल में तो ऑक्शन सीट में वो बोलेला व्हीकल के लेता कैसे बा ऊ बिया तनि सुन प्रॉब्लम बीते वो तनि सुन स्क्रैच बा काबू से होलबा सब आवेला ऑक्शन सीट में तो हवे बोलेला कहाँ पर अब घाट के बोले बोला घाटक मौसला थोड़ा पड़ सकला ला बोलेला थोड़ा परसेंट से लाहुआ नहीं सारा व्हीकल जो घाट घाट थोड़ा परसेंट कुछ बोल जला एगो घाट जो ऐसा किला तनि सुन सब लगे ये हुई तो इसमें काबू से हुई ये थोड़ा परसेंट बोला तो मोटे हुआ तो सैंक आवला घाट सैंक तो हम हाँ सब घाट चाहे देखे के जैसे घाट सैंक वो व्हीकल निवन कंडीशन में है वो कमे ढेर प्रॉब्लम ढेर से भी नहीं होगा और इच्छा जाए ना कि वहाँ पर हाउ पी हुआ मैं व्हीकल कुछ कुछ से भी होगा उबे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहा वो रेंटल डिपार्टमेंट रहा उबे को इंडिविजुअल से भी करवा ओकर यूजबिलिटी से जब जाना सब घाट व्हीकल कुछ है घाट हुए पर देवेला तब एगो दूसरा सर्टिफिकेट उपयोग बोला पी एस आई पी शिपमेंट इन्फेक्शन सर्टिफिकेट बोल जला वो कहे बोल जा जब ऑक्शन हो जाला बीडिंग हो जाला तब चला इंस्पेक्शन करके जो ओकर

इलाज अच्छा बा, उकर सासी अच्छा बा, उकर इंजिन नंबर अच्छा बा, या औरी उकर भीतर के इंटीरियर कैसे बा, मूर्तियाँ कैसे बा, सब हमें बोलेला कौन चल बा। तो हाउ कैसे लावला बोलेला उके छा जब जब को शोरूम में, वो शोरूम में तो लुटुआ में उकर विंडस्क्रीन में छा डिस्प्ले करके उकर ऑक्शन सीट और उकर प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट उकर में बोली लुटुआ के

0: सब इन्फॉर्मेशन चला जाने के तक मौसम से सब बुतन खा ले ली तो हाई सब डिस्प्ले रही जब जब कहूँ पर कि नहीं था तो अमिया जाए तो कौन कौन छा ना तो हो खातिर हम बोला था और देता है कौन छा कौन चीज छा लिखे के जब जब लिखे तो जहाँ लिखे कितना मिला बा मिला चाहे देखे को किसी में सर्टिफिकेट में प्लीज छा लिखे कि मिला लुटो में इंजिन नंबर लिखे कि छा लुटो में कौन पढ़ाई करके तो सब एगो शीत बा दूसरा नहीं बोलो लुटो हमें दूसरा नहीं बोलता नहीं सवाल बोलो में जाए हर कारण ग्राहक से बोली रहा सर कि हर सब चाह लोग जाने के कौन छा कुछ है गो ऑक्शन कुछ है गो किसी में सर्टिफिकेट कुछ है गो एक्सपायर तो ही नोट बोला जा डाले के कौन फ्री है कौन लाने है कौन घाट है जैसे घाट के ढेर आदमी नहीं जाने कुछ है घाट जो गर्मी लुटो कहीं जाए तो देखिए दिल बात तो बोली ना हाई लुटवा लेला हाई लुटवा तो नहीं जाना कुछ तो कुछ नहीं हो जल बासा तो एक आदमी बोला सर ग्राहक लोग पारे आवेला लोग के धुआ जाने के ऊपर धुआ इन्फॉर्मेशन मिली तब से किसी को लुटे कि नहीं
1: जैसे जी हमने के सकबा बतावे शोरूम के गाड़ी और ये एयरपोर्टे कर गाड़ी अंतर कौन जी है
2: शोरूम के गाड़ी जन बोले दोनों लुटवा शोरूम में मिले ला एगो जन इम्पोर्टेड सेकंड हैंड का है एक नमूने है सेकंड हैंड ताज़े वो देशा सेवी होलबा और दूसरा शोरूम है वो नया गाड़ी वो ताज़े नया गाड़ी वजह जैसे लाटेलिए वर्कशॉप में से डायरेक्ट कबो नहीं सेवी होलबा दूसरे कंट्री में दूसरे देश में नहीं सेवी होलबा तांजी रिकॉन जैसे सब लोग जाने लग सा रिकॉन वो सेवी होलबा दूसरे पेई में तब ये सब तब मोरिस में इम्पोर्टे होलबा
1: तो मान लो कोई एगो एम्पोटे तब एगो गाड़ी एम्पोटे करवाता तो वो कैसे जानी कि वो गाड़ी सही बा कि नहीं
2: जैसे हमारे कोलेग बोला चाइना देखी के प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और ऑक्शन सर्टिफिकेट इस सब डॉक्यूमेंट हवा में सब चीज़ आफिशे बातें जैसे एगो गाड़ी देखबा तो सकेला दूसरे देश में एगो एक्सीडेंट कर लगबा तो एक्सीडेंट वो लोटोवा में बताए कौन बगल तापे होल बा कहाँ स्क्रैच बा मायने है कि एगो बड़ा रहल सब चीज़ है सब सर्टिफिकेट वन में बातें यही चीज़ वन चाहेला ग्राहक लोग जब जा लंग सर शोरूम में चाहेला देखे के निमन से ये सब चीज़ वन तब एगो डिसीजन लियन सर जैसे ओकर मिलाज कोनो के दिखबा तो मिला थोड़ा ज़्यादा बा मतलब कि दूसरे देश में ज़्यादा रूले होल बा कोनो लोटो के मिला जो कमती बातें
1: तो कबो कोनो समस्या पर गल बा कि मतलब कर मिला पर कर लाज पर जितना कि कोनो प्रॉब्लम शिकायत दर्ज कर गल बा कोनो ग्राहक से
2: हाँ ये सब लोटो पर मिले ला शिकायत तब इंस्पेक्टर लोग जा ला देखे लंग सा मैं से माँ किने के आगे जब अपन निमन से जांच कर ले बा तब किन ले बा तब उतने प्रॉब्लम नहीं हुई
1: अच्छा लाभांतर दिस लाभ हानि दोनों में होला
2: हाँ दोनों में
1: तो कैसे कैसे लाभ कैसे लाभांतर
2: तब जैसे गो नवा लोटो जैसे बोली ला सा लोटो तन को नहीं रूले होलबा जब रूले करबा तब जनबा एगो प्रॉब्लम है तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है शोरूम पर जे को प्रॉब्लम डोरिजिन हो तो वो लोग लोटो के रिपेयर करें सा पीस चेंजे करें सा ओ बियन लोटो वे नेट सक कबो कबो देखा सा लोटो वे नेट चेंजे होला पारे सेकंड हैंड व्हीकल के पारे जब देखबा एगो जब और सेल एग्रीमेंट जैसे बोली जा सा उमें एगो कॉन्ट्रा जैसे किन बात है एगो कॉन्ट्रा शोरूम दे वेला वो कॉन्ट्रा में लिखल बात है वारंटी कितना है वो लोग वारंटी दे वेलंग सा अब डिपेंडर वारंटी पर जो तोहर प्रॉब्लम होल बा जे कबो वारंटी कुवेर करेला ओ बे कबो गारंटी जैसे बोले जा सा नहीं कुवेर होला अब ला प्लीपर जैसे बोले सा वेयर एंटी है इस पर गारंटी नहीं आवेला गारंटी कबो आवेला मुते पर डिपेंडेंट शोरूम कौन गारंटी दे लगबा कौन लोटो पर और लिटो के कौन प्रॉब्लम होता तब ये सब चीज़ वन चाइना जांच करके निमन से तब देखबा कबो कुवेर होला गारंटी उबिया कुवेर नहीं होता थी
1: अच्छा और चार

0: 02-8085 पर हमारे श्रोताओं दर्शकों का अगर कोई जवाब मतलब सवाल हो या फिर विचार बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-8085 पर।
1: ठहर जा मौसी ठहर जा, उतरे द मौसी उतरे द, जगह नहीं बा मौसी विश्वा में जगह नहीं बा।
2: ले लो बाबू ले लो, तू घंटा से खड़ा है, खरे खरे ले लो।

0: सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड सेकंड हैंड कार्स की बिक्री और उस पर लागू रेगुलेशंस। तो जैसे एगो नवा गाड़ी खरीदबत ओकर फिटनेस वगैरह 7 बरिस के बाद होला, तो एगो इम्पोर्टे कर गाड़ी के फिटनेस कैसे होला?
1: एगो गाड़ी इम्पोर्टे होला तो ओकर कौनजी होना सारे बोली हम एगो यूनियन बा ट्रेड डिविजन वो सब देखेला एम्बो कैसे करल जाला एगो दूसरा लाला बकेला तब हमने देखेला सर जन जन का जो गाड़ी शोरूम में चला बा फिटनेस कैसे होला। जैसे उत लादवान के जब निकाय लंग सर बन जाए वेयरहाउस में तो लोग आने लंग सर तब फिटनेस वो लोग करे लंग सर हाँ भैया उतराज दिलवा शोरूम में वही फिटनेस करेला तब फिटनेस कर देवेला तब बोलेला फिटनेस होकर बात तब बोला तब हमने की लास्ट कौन सा बोला हाँ बोला तब एगो दाफे बोले कि चांदी की जब एगो आदमी जला एगो लुटो कि नहीं तो एक प्लस नहीं चांदी के चला सगुर देखे कि कैसे देखे हैं चाहे एगो को मुझे सैंप नहीं हाँ वहाँ जाए ढेर चीज़ को मैं आसोसिए हाँ जैसे ताले बोली लोग के घात बल है कि कौन लाने हा कौन मोह कौन कौन घातों को दाफे है पूछता हूँ घात और वारंटी दो दाफे डिफरेंट जब एगो आदमी को लुटो देख लेला कि नहीं के तो एगो सेल्स एग्रीमेंट सही करेला थ्री डे वाला के हो जाए उतराज डीलर वाला के कि तेल तेल तो किने था तो वो चला कुछ डिटाइल लुटो वा मिली हमें और हमें बोले एगो गारंटी दे होता गारंटी लाला बोला गारंटी दे होला तो कुवे गला को बोला गियर बॉक्स हम जब बॉडी विटेस और को बोला बन अदर पार्ट्स को धोला डिपो हाँ जैसे कि हम लोग को एगो एक्सपीरियंस हम जहाँ को लुटो कि नहीं हम के बोला गियर बॉक्स पर ऑल ऑल पार्ट्स है नो के दिला गारंटी डिपो कौन कौन शोरूम और आदमी लोग जहाँ जाए कि देखे कुछ कि ना चाहता हर मिशन बोला सब जब एगो दाफे किरा लुटो फिर से बताए लुटो तो एक गाँव डिसीजन हो ढेर पैसा लगेगा एगो फाइनेंशियल डिसीजन है किने के चाहे तब लोग चला देखे कि वो लोग के हिसाब से कुछ करिकुलम सा एगो लुटो जाए ना अब रजिस्ट्रेशन जैसे डिक्लारेशन बोला ना फिर से हाँ कौन कौन पुसान सब हो पाबा बा मिल उतना पे करी लाओ कैश उतना पे करी डी मिल उतना पे करी ओकर हिसाब से था देखे कि फोमेजाफे देखा लुटुआ में फोमेजाफे बोली चला सचिका रह के कौन घाधा कुछ देखे के लुटुआ के जिस घाधुआ उन्हें बोला लुटुआ अच्छा बाकी ना घाधुआ बोला हुमा कैसे ग्रेडिंग कर सा दियो में हम मोरिस आए तो जिस जैसे जैसे बताई जो डील हुआ बोला तो हाई लुटुआ ले ला हाई उन्हें चुकी फोर्स के एगो लुटो लेके हैं तो किसान कोई डिसीजन लेके अब जैसे बोली अब जब एगो लुटो कि नहीं तो दू गो ऑप्शन वो भी कैश लेबा उबिया एगो लीसिंग कर बस पा एगो लोन ले बस पा तब हाई सब के चाहे निमन से देखे कि कौन सी किन तो कौन सी अब एगो एगो जब जब एगो लुटो की जैवी करे हुए देख लेगा कोई तो कोई बोला जिस मिल पे करके कोई बोला वह मिल पे करके कोई बोला साइक मिल पे करके तो हम जिस मिल वाली कौन थे बोला फ्री लुटो हुआ इनिशियल जो लाफेर जो पे करी हमें इंक्लूड होला जब अब परफेक्ट वो कहा होला जब रिजर्वेशन कर दे जिस मिल पे करें सर तब एगो लोन के लिए अप्लाई करे तो लोन नहीं आप बोला तब कुछ तब ओके छा पूछे कि कुछ मौसम से इसकी जो है जे जिसमें लोग पे कर रिजर्वे करके जे हम लोन आप कुछ करब वो भी रिफंडेबल है या नहीं रिफंडेबल है तो छा पूछ ले कि जब नहीं रिफंडेबल है तब तोर पर निर्भर बा कुछ करबा लेब पे करबा तो दू दिन को प्लस गली समझ कोनो पास बिला 10,000 कोनो पास बिला 20,000 कोनो पास बिला 50,000 ओकर लालवान है पर तो तू लोग चाह देखे कि अब जब तोर बजट के हिसाब से तो लोन मिली और कार गाड़ीवा के ऊपर फाइस तो बजट के लिमिटों में बा कि नहीं बा या कोई दूसरा गाड़ी स्वाजरी करा जैसे बोला कौन से माते है राइट टू चूज बना तो स्वाजरी करना चाहे हाउस शोरूम से हाउस शोरूम से स्वाजरी करना चाहे कौन लुटे चाहेला तब ओकर हिसाब से किनियन सर तब आलू को जाफे बा कि लोग के चाहे जो कोई टेस्ट ड्राइव है सेंस को चाहे जाबो करे लुटवा से इस शोरूम में चाहे देख के घरे देखे के चाहे देखे के वेहिकलों में कुछ देखे कि चाहे ओकर इंजिन नंबर सासी नंबर सब है भाई एम्पो तो है ओके चला कौन लाने हा कौन पुलिस सब चाहे रहे कि तो हाउ जब जब सेल्स एग्रीमेंट करी तो PSI सर्टिफिकेट हुआ और ओकर सेल्स एग्रीमेंट पारे चाह रहे कि और वेरीफाई कर इंजिन नंबर पारे बा कि नहीं बस वो कंपनी है जिस वाला जैविक ऑडियो जन मोबाइल एक जीवामिक बा और दू गो इंस्पेक्शन कर वेहिकल हुआ कि जब ऑप्शन में पास हो जाला तब वो लोग ओडोमीटर रीडिंग देवेला कि पारे रहला हो सीटवा में जो डिस्प्ले कर लुटवा पर ओकर रीडिंग वा देखा ओ दो मीटर मिलास देखा अच्छा बा कि पारी बा कि नहीं जैसे कि डिफरेंस होता प्रॉब्लम हो जाए अब लुटवा कि नहीं रहता तो हमने के एगो एगो काम मिल रहा कि एगो एगो आदमी को लुटो कि नहीं लेबा तो को मिलास दे रहा तब हम PSI सर्टिफिकेट में और ऑप्शन शीट में एगो एगो और को पापिया होला और कम एगो सीरियल नंबर ला सब इंटर एगो वेबसाइट में हेल के चेक करे सच्चे वा मिलास हुआ या झूठ बा तब बोले लगा सा मिलास ढेर जैसी रहा तब हूँ

0: जब बेचा था तब बता इतना बा नीचे बा तब को प्रॉब्लम होता है जब मैं उगल अपन रिसर्च कर लग तब देख लग तब गई दिशा चेक करे तब है कि सो थ्री डिवीजन दला और लोग से इंपोर्ट दिला
1: था
0: हम लोग रिफर हुआ हम लोग मैं मिनिस्टर में था तो कि सो के रिफर कर लिसा अब लोग देखे से कौन प्रोसेस दला को के अनुसार तो है से पहले के ग्राहक लोग के देखे कि अब अभी हम वाके कर बा अभी हबी है लेबो मैं जब शोरूम में जब तक देखो ढेर मिला से रुता था अब लाउसा अकाउंट मिल के मिला था तब चाहे देखे कि सब चीज तो मोटे हो गए ना तो वही खातिर एगो डीले लोग लुटवा ना था फिट करे को बजट के ग्राहक लोग के तो खातिर बफा मिलास और पफा लाओ 100,000 हा मिलास पफा 14,000 हा पफा 20,000 हा पफा 50,000 हा उसके हिसाब से प्रीवा वो ये होला और डिपा ऑप्शन लुटवा में कौन कौन ऑप्शन बा वैसे जब एगो लुटे किन बा ओकर ओकर पैकेज हस बा X c'est pas G c'est pas premium c'est pas différents versions le prix varie la même modèle c'est prix va varier là c'est qu'il a 50,000, 125,000, 75,000 tu as tout que tu as indiqué que quand la famille quand tu kines toi qu'est-ce que la famille bah c'est pas individual hawa c'est pas double mi hawa qu'est-ce que le toi quand tu sais avec quoi bah que vous le calba y a quand tu veux trip quand tu vas dans le garage mais t'as vu investissement dans la chose mais quand tu kines que dépression là les temps c'est किन के गार्ड में समझ रखे थे इतना सेविंग करके ना डिपेंड लोग के बिजनेस कर देखा कौन चीज के तो कोई बिजनेस मालूम तो आगे गोलो तो अब देखो लग्जरी ने रहा से आगे रहा अब देखो नेसिसिटी हो गई ताकि जब बच्चा जो लोपिटास पास है ना जाए बार बार ट्रांसपोर्ट सब कहीं चाहे ना घर में लेके जैसे कोई इमरजेंसी हुई तो वहाँ जाए सकें से सेविंग करें
1: अभी जब कुछ क्षण पहले बोले एनरेजिस्ट्रेमेंट अब जब एक इम्पोर्टेड वाली गाड़ी और सेकंड हैंड और जो नवा गाड़ी ओकर एनरेजिस्ट्रेमेंट में फर्क हो रहे ना
0: एनरेजिस्ट्रेमेंट में हाई मैं हमने के थ्री डिवीजन जाए हमने जिस कोई कोर्स मारते दिख रहा है लोग के फ्री सब सब पापियों है पापियों के साथ देखे तारे तारे बोली पापियों देखे के चाहे कौन चीज में सी कर सब गाँव से मिले तक कि नहीं पूछा सवाल कर पारे को एगो जब जाए एगो एगो फ्रीज दिया पा टेलीविजन के मंगा सब तो पूछे ला नहीं पारे ले तो पारे भी पूछे के समय ओकर नेचर तो डिफरेंट है सब लोग तो लारू सब देखा फ्रेंच के कलर सब छा देखे कि सब को मैं जब तुके मन को मैं कांशों ले सब हो ले जाए तब बस लोग
1: L'essence à la full électrique gari, quelle différence qu'on tient? La
2: différence que c'est électrique gari, électricité c'est chali, au collège batterie batte, etc. Tandis que l'essence que gari, normal, l'essence feeling médiaya, l'essence d'alia. Or électrique, or l'essence, mais prix au que ego fork batte. कबो देखिला सा इलेक्ट्रिक के गाड़ी जस्ती मंगा है बस कि ऊपर में नवा टेक्नोलॉजी है नवा चीज बातें और लेसेंस के गाड़ी तो
1: नोमा तो जैसे जानी ला जाएगो हाइब्रिड गाड़ी दोनों यानी के लेसेंस और बैटरी से चली जाता तो सही में इकोनॉमिक है इस हिसाब से इकोनॉमिक
0: है कैसे होले का तो ना बेबो अब होलो तो लाओ 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर वो इसमें तो 110 अलावा दसी तो 120 किलोमीटर दसी दे गोना सो तो डिपो कैसे दे में होले का था हाइब्रिड जाने कौन था हाइब्रिड है एगो एगो टेक्नोलॉजी है जब एगो लाइसेंस से सेवी कैला तब बैटरी की चार्ज कैला तब बैटरी वा चार्ज लो तो बैटरी लो तो बैटरी से बिकला तो हम एगो हाइब्रिड रूले कही हम के लोकल एगो इकोनॉमी है इकोनॉमी हमारे एक्सपीरियंस बोलते हैं हमने सबके एक्सपीरियंस कैसे बा वो डेपा कैसे रूले हुई बा तब हाइब्रिड में एगो लामोटाज है जैसे बोलिए सर ग्राहक लोग के चाहे जाने कौन सी खोते हैं एगो लुटो चाहे ला फुली लाइसेंस अब जैसे लाइसेंस रूले ला ou bien इकोनॉमी कर दें हाइब्रिड और भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बहुत जाए ना चला कुछ चार्ज करके घर चला पोच डाले के एगो चार्जिंग पोच डाले के एगो नुवो का इलेक्ट्रिक इंस्टॉल करके तब चार्ज करके तब जैसे ना था पेट्रोल के प्राइस तब चढ़ते जाता तब आदमी लोग के पहुँच के ना हाइब्रिड में चला जाने के जैसे जैसे लोग के टेंशन सेविंग करे तो वो लोग कुछ शॉप निर्भर रहा कुछ कर कौन कहते मशीन की सब ना
1: और याद रखिए जानकारी ही कंज्यूमर की सबसे बड़ी ताकत है अपने अधिकार राइट्स को जानिए और सवाल आप पूछ सकते हैं बेझिझक हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत 402-80-85

0: हमारी दो अतिथि हैं आज स्टूडियो में, श्रीमती बसावन सुपोल और श्री मिट्टू जी। तो जब कंस्यूमर जो है डीलर से सेकंड हैंड इम्पोर्टेड का खरीदता है, तो डीलर को बायर को कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना लीगली जरूरी है?
1: जैसे लालवा बोलेला, उनकी लालवा सेक्शन 12 बोलेला 12 नंबर 4 की बोलेला कि एगो डीलर जब एगो लोटो बेचता ओके छाना ओकर लोटोवा में जहाँ पर ओकर डैशबोर्ड बात पर कहाँ पड़ी छाना ओके एगो जिस तरह बोली ऑक्शन शीट बोले जाना कहाँ लोटोवा कहाँ पड़े अलबा कहाँ से किनाल बा प्लस एगो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन हो बा हुआ पड़ी कि लोटोवा फिट बा बोल के तब हर सब तरह डाले के प्लस ओकर फ्री डाला डाले के कितना कुत्ते होता ओकर घाट छा डाले के पी एस आई वा में घाटवा मिली ओकर में डेटा वगैरह डिस्क्रिप्शन मिली

0: कब लुटवा बनल बा कुल नाने बनल बा कब कितना होल बा एंजिन नंबर सासी नंबर है फिर बिया पूता है बस कि हवे तो चाहे वेरीफाई कर लुटवा में उतर पीएसआई में सके वो एरिया हो जाए मेरा एरिया होला ने बिस्मा एरिया होला हो सके हो जाए चाहे वेरीफाई करके उकल जैसे बोले वो ग्राहक जैसा कोई तो कि नहीं ना इसी चाहे गुल बोले गुल तो बिजाबा एक गुल तो उठा के चला उसे ना चाहे सब चीज वेरीफाई करी तो इस तरह बोली ढेर ढेर आई बा ढेर सुहावा लुटो ढेर का ही थे बा इस बार एस वी बा ची लुटो बा लुटो नॉर्मल बा इसे सब का लुटो बा उन लोग की देखे कि चला कौन लुटो सब लुटो में पारिवे अप्लिक होला जिस एक बार लुट बा लुटो में डिफरेंट है लांच हमने सेलमा मोटो कॉल बता सा लुटो के तब उन लोग की चाहे सब देखे प्रीमियर दाफे हाई जब दाफे उन लोग के स्क्रीन में ने डाली था और डील हुआ जो इनपुट आते हो जो लुटो बिचला जो लोग एक लुटो में नहीं डाली तो वो कौन था मौसम डाला बस कि भाई सब नहीं डाल लालवा बोलेला वैसे छा डिस्प्ले करके अफिक्स करके लाला बोला बोला छा उल के डाले के नहीं डाली तब गो कौन था वो
1: कोऑपरेट ना करी हां
0: ना दो कौन था मौसम जला कि सो ला कू जला तो सकी ला मान सो मी कू जला तो 3 ans prison là तो वे का तीन चाहे ला सब इंफॉर्मेशन छा दे कि ग्राहक आल बाय गो की दे फीस और तो हो पर राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू चूज इंफॉर्मेशन मीन ओकर आधार से ओकर देही कुछ की नहीं तो सब इंफॉर्मेशन था देगा प्लस जब गर्मी नहीं जाएगा जैसे हमने बोला सा जैसे बोले सा आदमी जो ढेर चीज नहीं ला कुछ है वो गाद कुछ है वो ऑप्शन चीज कुछ है वो सा वो लोग चाहे जाने की जो नहीं जाना तो जैसे प्रोग्राम करते सा जो लोग नहीं चाह सकिया हमने कुछ टेलीफोन के सब सब बोले कौन सी बात कौन ब्लूटूथ चला के नहीं की कहाँ चला के नहीं की ना कहाँ नहीं बोले सा कौन सी चाहे देखे के कौन सी सब चला देखे पढ़े के जहाँ सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो नहीं की नहीं बस हर चार तुके मिले के बस उल के चाहे ला लो मैं बोला चाहे डिस्प्ले करके उसका हिसाब से वो कुछ चला किने के लिए ऐसा मिलेगा प्लीज चैनल को पूछे के जब लुटो स्वाजे का कुछ कर एग्रीमेंट में लपसा एगो सेल्स एग्रीमेंट में लपसा लुटवा के लिखापसा कौन गाहक मछी बा और चाह लिखे लुटवा के जिस भितरों देखे चला नहीं सोली रिलाय करे के कि जो थ्रेडवा बता ना हाई लुटवा लीला हाई लुटो लीला हाई ट्रेंडी बा हाई तो के कोई फोर्स ही नहीं करे एगो लुटो की नहीं के तो लालवा बा फैते मिसलीडिंग मिसलीड करके फोर्सफुली वो ट्रांजेक्शन में तुके नहीं सीखे लाए बस तू सब स्वाजे करा वो तुके साकि बोले इन्फॉर्मेशन दे ओकर इन्फॉर्मेशन में उद्योग डिसीजन ला तो नहीं बोली हाई लुटवा ले अच्छा बा हाई तो लामुद बा हाई अच्छा बा तो ऐसे ना है तू ग्राहक हवा जब तक लुटो की नहीं तो बिजनेस के हिसाब से तो एगो लुटो स्वाजे करा जैसे कॉन्फिनियर था तो फैमिली के कुछ कर रहे उधर लुटवा से जब एगो लुटो सब बिजनेस कर रहे लुटो के फैमिली को आ रही देखो हाँ हाई सब इन्फॉर्मेशन था दे के तब जाए चला जाने के कब फिटनेस तो बोली कितना चाह दे के कितना कितना कुत्ते हुई लुटवा जब लीसिंग कर बस पा कैश पे कर बस कौन कौन कंडीशन हो उस तक चला बोले के तब इन्फॉर्मेशन दे तब से बस जाए कि नहीं लुटवा इसमें जोर बा
1: कुछ जैसे हमारे कोलेग बोल ये सब इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है जब एगो लुटो खरीदे जाएगा और ये आर एगो चीज चाहला जैसे हर प्रोग्राम में बोली सा अपन बजट के अनुसार लुटो एगो छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है एगो बड़ा इन्वेस्टमेंट है एगो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कोनो कोनो ग्राहक लोग लोन लेके लुटो की नहीं लग सा जैसे बोली सा लीसिंग तो ये सब देखे के चाहला जे अलालोंग जब एगो लीसिंग ले वत हुआ 5 बरिस के 7 बरिस के तो अपन बिजे के अनुसार लिया
2: और जैसे हिडन डिफेक्ट्स जो है उसका जो इशू रहेला वो बहुत कॉमन रहेला कॉमन कंसर्न तो अगर परचेज के कुछ दिन या वीक्स बाद में जब मैकेनिकल प्रॉब्लम मतलब सामने चला तो कंज्यूमर की कौन अधिकार है कंज्यूमर की कौन राइट्स है
0: गुरु तो किन बताए तो ऐसे बोली एक सारा को एक वारंटी रहेला हां वारंटी में व्हीकल के डिटेल रहेला और बोली ला कुछ कवर करता जैसे कोनो कोनो बा बोला ऑल कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कवर्ड बाय द डीलर प्लस इंक्लूडिंग गियर बॉक्स बोला को में बोली ला तो चलो के जाने के जो प्रॉब्लम बोलता जैसे एनो में गांव छी बा लतो हमें किन लेगो सेकंड हैंड तो दूसरा में कहां से के हाथ नहीं चला के वारंटी वा वॉइड हो जाए वारंटी वा नहीं नहीं नहीं कोई नहीं नहीं नहीं वाला रही हाउ एनो वा में कितना दी हुआ था हाउ हाउ लिप कौन कितना प्रॉब्लम हो तो थोड़ा डील लगा के देखे के हाई इन्फॉर्मेशन जब कुमार सब किने जब लुटो तो सब चीज़ पूछे के प्रॉब्लम हो कुछ करब हिया नब हमारे को दूसरा गाज बा हुआ गाज नहीं वो गाज आप लिए बा कौन भाई हुआ कि हाँ सब चीज़ पूछे के तब एगो प्रॉब्लम हो तो वो लोग समझ गया वो लोग के वारंटी में लिखल बा कंडीशन नीचे सीए करवा वो तू सीए करवा पर हा गाँव चो अब जब बोले ऑल कोस तो चला पूछे के ऑल वा कुछ बोला जला ऑल वा वाक बनो छा बोले कुछ बा लाहू बा लातुल बा ला पेचे बा मुते बा कुछ बा बोली अब लाबा इंटीरियर बा कौन सी बा सब पूछे के तो को बोली तो स्पेसिफिक करके तब भाई

0: बोले कि तब आरोग्य दफे बोले चाहते हैं कि एगो ओ तो आज दिला कौन चीज है उगो को पीएमई मिलल बा उगो को इनपुट परमिट मिलल बा उकर एगो बीआरएन बा उकर एगो प्लस बा बेला फिजिकल एड्रेस बा वो अपनी जहाँ अपनी बिजनेस वा कहीं ला उकर वो शोरूम बा लालवा बोले ला उकर को शोरूम चाह रहे के उबिया को एगो यार्ड चाह रहे के शोरूम बा के भीड़ी वो क्लोज यार्ड रही फेम है रही हूँ मैं पर अपन लोटे चला एक्सपोज करके उकर शोरूम में भीतरी बा बन बा या उकर यार्डो में उकर यार्ड के अलावा और शोरूम के अलावा कहूँ ने सकी लोटो एक्सपोज कर लालवा बोले ला जैसे गर्मी आए लोटो किन बा शोरूम आलो बोला लोटुआ हिया ने बाको दूसरा प्लास बा जहाँ जाने के कौन प्लास इसकी उछाला लोटुआ तो आगे रहे के अब लोटुआ आए तो बोलिए लोटो किन बा तो फोटो बताओ था पूछता मैं हाई दिखाई लोटुआ ना था हर ना था तब तूने जान मा कौन लोटुआ होता तो जो कोई ने कर दे सब आतंक का लोटुआ तब तू ही देख बा तो आगे रही देखा लोटुआ कैसे बा उसका कौन कैसे बा पूछा तब डिसीजन लुआ एक को शोरूम ने जा सगलो सगलो जा देखा कौन कौन प्रिय मिला था जहाँ मैम वो दिलवा के हाई प्रीवा डिफरेंट बा वहाँ डिफरेंट बा तो देखा कौन तो बीजे के फिट होता हर के हिसाब से चाहे कि नहीं के बोली डीलवा चाहे ना ऑटोरिजे इम्पोर्ट परमिट मिला मिसा को मैं जीवन से उसका सब कौन सा हम है और पेमी पे कहला प्लीज ओकर शोरूम के कभी है ना हुआ पर ही ऑपरेट कहला ओकर अलावा कहूँ पर ऑपरेट नहीं करे इस मुँह पर ही
1: डीलर कार को एक्सलेंट कंडीशन या एक्सीडेंट फ्री बताता है लेकिन परचेज के बाद कुछ और पता चलता है कंज्यूमर क्या एक्शन ले सकता है
2: जब लोटोगा किने एगो सेकंड हैंड इम्पोर्टेड कार जैसे आगे बोली सर ये लोटोआ देशा से अभी होलवाती तो कौन कंडीशन में दूसरे देश में से अभी होलबास पाएगो लोटो एक्सीडेंटे है एगो लोटो सकेला नहीं एक्सीडेंटे होलबा एगो लोटो जिस से अभी होलबा दूसरे पेरी में तब ये लोग रिकंडीशन करके मुकुस में इम्पोर्टे होलवाते चाहेला जुन जस्ती इम्पोर्टा हाँ है सब ऑक्शन शीट और ये प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट वन चाहेला इंस्पेक्टे करे के तब जनबा लोटोआ सिपा एक्सीडेंट फ्री है सिपा एगो माइनस स्क्रैच बाते ओ बियन जूसर चीट बाते लोटोआ में ये सब डॉक्यूमेंट वन नहीं वेरीफिए कर बा लोटो किन लेला तो ये बाद में प्रॉब्लम
0: लोगी जैसे बोला ऑक्शन सीटों में जहाँ डीओ होला ऑक्शन को बिड होला तब लोटो मिलेला तो ऑक्शन सीटों में एगो एगो एगो एगो एगो एगो प्लास्टिक हर बार डैमेज पा लोटो में स्पा कल में एक्सीडेंट होल बा स्पा एगो स्क्रैच बा हाउ जैसे व्हीकल ऑस्नी बा ऑस्नी होल ऑक्शन में तब आवेला तब ऑक्शन में जब आवेला लोटो जब हाउ लिटवा में तब किना ला तब हाउ लोटो किना जला तब एगो इंस्पेक्शन लोटो में तब इंस्पेक्शन के दौरान हाउ पीएसआई सर्टिफिकेट है आगे ऑक्शन चीज था जैसे पीएसआई बोलेगा प्री शिपमेंट बोलेगा आगे शिप करके मोरिस के तब आवेला एगो इंस्पेक्शन पान कंपनी इंडिपेंडेंट करना हुआ पर जो ऑक्शन से रिलेटेड नहीं है वो लोग देवेला वो लोग के कुमैच व्हीकिल छबा माइनस खाच बा सिपा उकर में कब एक्सीडेंट नहीं होल बा सिपा का बुसल बा हेने को तेने सुन बस कि जब कोनो शोरूम जा रहा तो बोला लुटुआ बता रहा तो के जैसे अनले बा आज इतीज बा मालंग बा नी मोगो लिखल बा हेने लुटुआ बोला आज इतीज ऐसे बा हिया हिया तेल तेल प्रॉब्लम बा जब लुटुआ किन ले बा तो लुटुआ के फिर से रिफर्बिस करके नितवाए करके दाँत को उजर के बा लापेंचे को उजर करके बा दैंत को उजर के बा सब को उजर करके तब देला तब तो के चाह देखे के जो लुटुआ तो के बताएला कुमोस मो जैसे आल बा राजवान से निकल के आल बा तो चाह के देखे कौन कहाँ डिफेक्ट लोकल बा ग्राहकवा के तब जब लोटवा के लिवरेजन ले तो चाहे देखे कि हाउ सब प्रॉब्लम जो दिखल को मौसम एक प्रॉब्लम के आते हो गोजो हो कि नहीं जिन्हें होता चाहे बोले के वही कहना सब चाहे देखे कि हाई सब के देव सहला सब चीज प्रॉब्लम
1: हो वही कबो कबो बोले कि सिपा इतना ले रूले मैं 400 किलोमीटर रूले कैसे जनबक मुझे कि सिया सिया हुई बाकी इतना ही
0: इंस्पेक्शन होला तो कम ऑडियोमीटर रीडिंग में रहला ऑडियोमीटर में जला जो उनको मिलाज को लिखो में रहला हाउ जो मिलाज बा जैसे बोला था लब लुटुआ खुद दिख बता पी एस आई वा में मिलाज बा कौन लाने के है तब हाउ ओकर मिलाज हुआ ओकर छा रिफ्लेक्ट करके अब तक परफेक्ट डिफरेंस होला का है जब हाउ मिलाज है जहाँ पर हुआ से अनाल बा हाउ मिलाज है तब आवला लादवान चलो तो कि बोला घूले करके आने के शोकुम तक ना तब तेरे से मिलाज तो नहीं मौत चला तब हवा एगो डिफरेंस है बस पापा लोटवान लोग काम में नहीं आए ना तो पापा घूले कर जाना सब प्लाक टेपे लेके शोकुम सिर्फ लादवान से निकला पोली में तब तो शोकुम ले सीट में बता हाउ बुधवार पहले घूले कर ना मिलाज तो नहीं मौत बोला तो चला उतना चला चला आएगी
1: और अंत में हमने के जितना कोई हमने के संगे बा

0: भी एगो मैं छोटा सुन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन छी देबा जुन अभी मन बा प्लान कर रहे थे मन सा कि कुछ एगो लो तो कि नहीं कि कौन छी बोल बा
1: हमी जैसे हमेशा बोली ला सा कंज्यूमर राइट और ही कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक के चाहे ला मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके और ही ओ लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज वेरीफाई करके आगे तब जाइया एगो खरीदारी करी वो लोटो जैसे बोली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है तोहर बजट के बड़ा भाग ले रहे ला चाहे ला जाने के लोटो की ना थोड़ा तो कौन पर्पोज से की ना थोड़ा रोज के रूले हो उबे वन ऑफ रूले हो उबे एक फैमिली बिजनेस बातें तो ई कारण लोटो ले हुआ थोड़ा ये सब चीजवन जब कुमार जा आगे से प्लान कर लेबा तब जाइबा शोरूम में तब लोटो वेरीफाई सब हो तब एगो निमन डिसीजन सक बले
0: कौन ची बल बमी जी
2: जैसे प्रोग्राम को मौसे कर लिसा अडमिनो सकिला धसा इंफॉर्मेशन ने जहां लग सा अब एगो ग्राहक को इन्फॉर्म कस्टमर गलबा ता जे कंसुमाते इन्फॉर्मे जितना चीज बोल दिसा पोंसे करते अडमिनो के लाभ उठाए सब फोन के तब हाय के जो जो इंफॉर्मेशन को मिले अब सेकंड से को बेटर डिसीजन ले कुछ किनियन सा आगे से दस जान से शोरूम देखे इस नहीं अब तो जाए ना हाँ हर सब चाह रहे कि नहीं रही तो नहीं लो अब तब अच्छा बात है प्रोग्राम दौरान उन लोग के इंफॉर्मेशन मिलल अब लोग के नेक्स्ट परचेज करे जेन से खरीदारी सेकेंड से सब इंफॉर्मेशन देखे सिपा चेक करे पूछे तब तब सेकेंड से को बहुत डिसीजन ले कैसे को इंफॉर्मेशन मिली तक को राइट टू चूज कैसे स्वास्थ्य कैसे कौन सी चला किने के लिए उन लोग के बजट के हिसाब से
0: तो आज की चर्चा हमारे सामने ये बात आई कि इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है बल्कि कंज्यूमर के राइट्स उसके अधिकार और सुरक्षा के भी इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए ज़रूरी है कि गाड़ी खरीदने से पहले उसकी कंडीशन जैसे ऑफिसर्स बोलन कर जैसे कंडीशन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स वारंटी और सेलर की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह वेरीफाई करना चाहिए तो आप दोनों ऑफिसर्स को श्रीमती बसावन सुपोल जी और श्री मितू जी इन सारी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे जितने श्रोता और दर्शक हैं उन लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे और जाते जाते फैजन टेक्निक पर हैं और उरूसा प्रोडक्शन साइका और जेनिश को उनकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एक और प्रोग्राम तक हमें अनुमति दीजिए नमस्कार

0: ये सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार राधा। मॉरीशस और भारत के बीच सहयोग एक नई मजबूती ले रहा है। ईंधन के क्षेत्र में आज पोर्टली में G2G समझौते पर दस्तखत किए गए। आपको बता दें कि भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी मॉरीशस के औपचारिक दौरे पर हैं। भारतीय मंत्री ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात भी की। 18 सालों के बाद पोर्टली थिएटर फिर से कार्यरत होने लगेगा। निर्माण कार्यों के लिए काफी वक्त लगा। इस परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए लगे हैं। मॉरीशस के चौला फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमेबर्ग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया

0: जा सके। वहां पर मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ सहायक योजनाओं का उल्लेख किया। ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं। विदेश में कैमरून की सरहद के पास जाम्बोए खान के पास एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये खान गैर कानूनी तरीके से कार्यरत था, इसी वजह से वो इलाका खतरनाक था। अभी तक लाशों को निकाला जा रहा है और केंद्रीय अफ्रीका में कोलेरा का फैलाव होता जा रहा है। कैमरून और चाद में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों मौतें दर्ज हो रही हैं। साफ पानी नहीं है और स्वास्थ्य मूल ढांचों की कमी है, इसी वजह से इलाज मुनासिब नहीं है। प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने फैलाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन जीवन स्थिति अच्छी नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। तेरूज में 37 साल के 37 years old श्री विराज बागोबान जो दू के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनकी मां सीता बागोबान के घर तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। कपोरो रोड गुडलैंड्स में 74 साल की 74 years old श्री जगदीश डामरी जो जगदीश जग के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनके घर कपोरल रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Continuous music.

माफ कीजिए, 4 to 5 PM एवरी थर्सडे इवनिंग दिल से मिले दिल। चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल कारवां को, बाली उमर को सलाम फिल्म का गाना। 1994 में बनी थी फिल्म और ये गाना एकदम ही सुपरहिट हुआ था, तूने तूने मेरा दिल लिया। और किसने किसका दिल लिया, चलिए एक साथ सुनते हैं।

कोई कहता है गुलबदन, कोई कहता है महबूबा, कोई कहता है जानेमन, और वो आपके कौन से नाम से बुलाते हैं, कौन से नाम से वो आपको पुकारते हैं, ज़रा हमें भी बताइएगा। प्यार से कोई भी नाम दे सकते हैं, मेरी बुलबुल, मेरी शोला, मेरी शबनम। प्यार की एक अदा है ना, जब प्यार करते हैं तो किसी को उसका नाम से नहीं बुलाते, उसका एक निकनेम डालते, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी गुल बदन। ऐसा ही होता है प्यार में, और जब प्यार होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है संसार में जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करता है या करती है, और प्यार का इजहार कैसे किया जाता है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

यदि तो कुछ कह न सका क्योंकि डरता है दिल कहीं अगर उसे दिल की बात पता चल जाए तो कहीं ये दोस्ती ही ना तोड़ दे पर कभी कभी दोस्ती जो है प्यार बन जाती है और जब प्यार हो जाता है किसी से तो उसके बिना जिया नहीं जाता हर पल ये दिल बस उसी को याद करता है उसके बिना सांसें लेना भी मुश्किल हो जाता है That's what we call love, yes. Love में emotions है, love में feelings है, love में passion है. Love है तो हम है, love नहीं तो हम भी नहीं. और उसके बिन जिया ना जाए तो बस उसका दीदार करते रहिए. कौन जाने आपके दीदार से वो आपकी नजरों के सामने आ जाए

कुदरत ने उसे क्या खूब बनाया है, चांद जैसा रोशन चेहरा, वो गहरी गहरी आंखें, वो गहरे प्यारी प्यारी होंठ, और ये आंखें जो है इन आंखों में हम नजर आते हैं। ये तो प्यार का नशा है कि हम अपने आप को उनकी आंखों में देखते हैं, पर क्या उसे पता है कि हम उनकी आंखों के अंदर हैं? शायद उसे पता हो, पर प्यार में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जिंदगी में रंग आ जाता है, बेरंग जिंदगी रंगीन हो जाती है, और जब उसका चेहरा नजरों के सामने आता है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह कितना अच्छा लगता है उसका ये चेहरा देखकर।

प्यार में कभी कभी दूरियां भी आ जाती है, पता नहीं क्यों पर ये दूरियां आ जाती है। और प्रेमी एक दूसरे से कितने दिन तक दूर रह सकते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह, पर उससे ज्यादा नहीं। और दूर होते हुए भी प्यार करने वाली एक दूसरे के दिल में रहते हैं। दूरियां चाहे कितनी भी हो, पर अगर सच्चे दिल से उसे याद किया जाए तो वो दिल में बस जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए।

ओ जानी तुम न जानी तुम। इस गीत के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे द ग्रेट गैम्बलर के एक रोमांटिक गीत के साथ, पहले पहले प्यार की मुलाकात, और वो गाना अमेरिका जाएगा शाम के ठीक 5 बजे। 5 बजे फ्लैश न्यूज के बाद संजय से आपकी मुलाकात होगी। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो मच। हमारी आपकी मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग को, जी हाँ, सुबह के 6 बजे से दिन के 9 बजे तक प्रोग्राम होगा या मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। तब तक हमें दीजिए इजाजत, और जय प्रताप सिंह को सब सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।

0: श्री गणेशाय नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः रामरस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम जय जय हनुमान आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिवादन स्टूडियो में उपस्थित चार बहनें माला जी को बहन शिवानी जी को बहन सीता जी को और बहन सुनीता जी को जय सियाराम
1: जय सियाराम
0: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी श्री हनुमान जी की स्तुतियां के साथ और रामायण संदेश के साथ जय सियाराम
1: जय सियाराम

0: राम रसधारा रसधारा
1: देवी सज्जनों रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा भाई संजय के साथ। स्तुतियों के बाद अब सुनते हैं सुमेरनी चार बहनों की वाणी में। जय सियाराम
2: जय सियाराम। जो सुमिरत सिद्धि हो

0: राम रसधारा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर भाई संजय के साथ हर गुरुवार को 5 से लेकर 6 बजे तक। जय सियाराम श्रोताओं, देवी और सज्जनों, कल हम सबों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक श्री तुलसीदास जयंती मनाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत बनने से पहले उनका जीवन बहुत ही कठिन रहा। तुलसीदास बनने से पूर्व वे राम बोला नाम से जाने जाते थे, क्योंकि जन्म लेने पर मुख से जो पहला शब्द निकला था उनका, वो था राम। राम बोला माँ के प्यार से वंचित रहा, क्योंकि राम बोला को जन्म देने के पश्चात माँ गुजर जाती है। पिता उन्हें मनहूस मानकर चुनिया के पास भेज देते हैं, नौकरानी चुनिया के पास भेज देते हैं। 5 साल बाद नौकरानी भी गुजर जाती है। ये कहा जाता है कि बालक राम बोला को खिलाने के लिए स्वयं माँ पार्वती आया करती थी, फिर स्वयं शिव जी ने राम बोला को लेकर उनके गुरु तक पहुंचाया, गुरु नर हरिदास। और वही नर हरिदास थे जिनके जरिए राम बोला के जीवन में अध्यात्म का प्रकाश आया। जय सिया राम, हर हर महादेव।
1: जय सिया राम।

0: जय सियाराम।
1: रामचरित मानस के बालकान की सुमरनी के आखिरी भाग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु का नाम शामिल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। बंद हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणें की के समूह हैं। जय सियाराम, हर हर महादेव।
2: जय सियाराम, हर हर महादेव।

0: मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जरी का सुंदर चूर है, जो संपूर्ण भव रोगों की के परिवार को नाश करने वाला है। गुरु के चरण एक तीर्थ के समान है। जितने भी तीर्थ स्थानों में गुरु ने यात्रा की है, उन स्थानों की धूल रज गुरु के चरणों में बैठ जाता है। इन्हीं इसी धूल को छूकर भक्त अपने माथे पर लगाता है। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम। गुरु के चरणों की वंदना करते हुए बाबा लिखते हैं, वह रज, वो चरणों की धूल सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। इन दिनों जब हम सब श्रावण मास की अंतिम सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम भी याद करें कि शिव जी अपने शरीर पर शमशान भूमि का भस्म लगाते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इसे आज तक न कोई बच पाया है और न कोई बचेगा। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योति, चरण नखों की ज्योति मनियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। पिछले चौपाए में गुरु के चरणों की धूल की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास अब की बार गुरु के चरणों की नाखूनों की बात करते हैं। जैसे समुद्र में चलने वाली जहाज को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउसेस होते हैं, उसी प्रकार गुरु के चरणों के नाखून दुनिया के भव सागर में जूझते हुए भक्त के लिए गुरु के पद नाखून राह की ज्योति फैलाते हैं। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम,
1: जय सियाराम। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिकय गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। इस संसार को देखने के लिए हम अपनी दो आंखों को लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे हृदय के नेत्र तब ही खुलते हैं जब हृदय के अंधेरे में गुरु प्रवेश करते हैं। तब ही ज्ञान और भक्ति के हमारे नेत्र खुलते हैं जिनके जरिए हम प्रभु राम को अपने हृदय में देख पाते हैं। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
0: जय सियाराम।

जय सियाराम, जैसे सिद्धाजन जो नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, वैसे ही सांसारिक वृत्तियों से प्रेरित व्यक्ति आंखों में चश्मा लगाता है, कोई दूरबीन उपयोग करता है, साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करता है छोटे छोटे कीटाणु को देखने के लिए, और एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप इस्तेमाल करता है आसमान में दूर के सितारों को देखने के लिए, लेकिन हृदय में स्थित प्रभु को देखने के लिए ये सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु को देखने के लिए हमें सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। श्रद्धा स्वरूपा माँ पार्वती और विश्वास स्वरूप शिव शंकर भोलेनाथ जी, अगर ये दोनों हमारे हृदय में हों तो जहां भी देखेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ राम ही राम नजर आएंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: देवी सज्जनों, रेडियो मनोरंजन के लेयर पर हम पेश करने प्रोग्राम राम रसधारा, और विशेष तौर पर हम तुलसीदास, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी कल जयंती थी। छोटे राम बोला से पंडित तुलसीदास, फिर संत तुलसीदास, ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में अनोखा था और आज भी अत्यंत ही प्रेरणादायक। ये माना जाता है कि तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार थे। मानस में लिखा गया है कि रामचरितमानस की रचना करने से पहले तुलसीदास जी ने हजारों बार अपने गुरु से श्री राम कथा सुनी, तब जाकर उन्हें यह अनुभूति हुई, उनमें यह आत्मविश्वास हुआ कि इस कथा को वो एक ग्रंथ के रूप में पेश कर सकते हैं। तब उन्होंने मानस की रचना शुरू की। उनकी उम्र उस समय 60 से भी अधिक की थी और वो दिन था चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, जिस तिथि पर हम सब श्री राम नौमी मनाते हैं, श्री राम जी का जन्म। और पूरे मानस को लिखने में उन्होंने 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगाए, और जिस दिन मानस पूरा हुआ वो तिथि विवाह पंचमी थी, जिस दिन राम जी और सीता मैया का विवाह संपन्न हुआ। जय सिया राम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: देवियां सज्जनों, आज पूरे विश्व में इंडियन डायस्पोरा के 37 मिलियन से भी अधिक भारतीय मूल के नागरिक फैले हुए हैं और जहां पर भी सनातनी पाए जाते हैं वहां पर तुलसीदास जी का मानस और हनुमान चालीसा गाए जाते हैं। फिजी, सुरीनाम, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया,

और बेशक मॉरिशस में भी। संत तुलसीदास जी का प्रभाव, उनकी रचनाओं का प्रभाव, तुलसीदास जी के राम का प्रभाव, तुलसीदास जी के भक्त शिरोमणि हनुमान जी का प्रभाव हम सब सनातनियों के जीवन और मन पर जन्म जन्मांतर तक अनुभव करते रहेंगे। जय हो तुलसी, जय सियाराम, जय जय हनुमान।

राम रसधारा। तो इसी के साथ आज का हमारा राम रसधारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त, ये सत्संग समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों को, माला जी को, शिवानी जी को, सीता जी को और सुनीता जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सज्जनों, आपके ध्यान के लिए और आपकी भक्ति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ चार बहनों के साथ। जय सिया राम,

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3 हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
1: नमस्ते हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा अभी 15 अगस्त के भारत के जन स्वराज दिवस मनावल गल ओके मनाते हुए हमने के मॉरिशस में भी एगो अलग गर्व के महसूस करी लाजा जब भारत के स्वराज मिलल रहल तब मॉरिशस में भी उस समय में एगो हस्ती रलन जे स्वराज दिवस मॉरिशस में जोश और जुनून से मनावत रलन और भारत के स्वतंत्रता से प्रेरित होके उ मॉरिशस में भी आंदोलन शुरू कर ले रलन जन आंदोलन यह ओम का झंडा आता है सोने वालों जाग चलो ई नारा गावत रलन अब समझ कल हुई बा कि प्रोफेसर बासदेव बिसुंदयाल के चर्चा हुआ था जिनकर बड़ा प्रतिमा कोदो वाटरफ्रंट में बा और आधा प्रतिमा स्वराज भवन लाल माटी में बा और उही ई देश में आध्यात्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में गति अनलन और मॉरिशन में देशभक्ति की भावना डललन प्रोफेसर बासदेव बिसुंदयाल देशभक्त मिशनरी विद्वान बेहतरीन वक्ता और लेखक रलन मॉरिशस वासी होते हुए वो भारत से प्रेरणा लेके मॉरिशन में अपन देश के प्रति प्रेम उजागर करलन एकदम देशभक्त के भावना वो अनलन और ई मानल जाला कि आधुनिक सांस्कृतिक मॉरिशस के निर्माण वही कर ले हवन अपन जन आंदोलन के जरिए वो हजारन जना के वोट करे के काबिल बनेलन 1948 के आम चुनाव में मतदान देवे के वो बखत इस शर्त रहा

कि तोहरा चाहिए शिक्षित रह के पढ़ल लिखल रह के। तो प्रोफेसर बिसुन दयाल सोचलन कि जे सब कोई के दस्तावेज दस्तखत करे के सिखावल जाए, अपन नाम कम से कम लिखे के सिखावल जाए, तो उ लोग के पढ़ल लिखल समझल जाए। और ई सही करे के आंदोलन स्वयं सेवक लोग गांव गांव में हर बैठका में चलेलन सा, और चुनाव में 80,000 से जस्ती जना के वोटे करे के काबिल बनेलन जा। 1933 में प्रोफेसर बिसुन दयाल भारत कललन लाहौर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर आज़ादी के आंदोलन चलत देख पंडित बिसुन दयाल महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और लाला लाजपत राय जैसन हस्ती से प्रभावित होलन। 1939 में मॉरिशस लौटला पर उ देखलन कि मॉरिशन जनता में भारतीय मूल के जो मॉरिशन हवन जा उ लोग में एकता के कमी बा। उ लोग के उत्साह बढ़ावे के भाईचारा और एकता के भावना उ लोग में आने खातिर चाहिए एगो अभियान और एगो प्रशिक्षण आने के, और उ गांव गांव में प्रचार शुरू करलन। और ई प्रचार में उ आध्यात्म, धर्म और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर बहुत जोर देलन। उ मॉरिशस में लेकोस मालबाओ के खत्म कर देलन। लेकोस मालबाओ मॉरिशन हिंदू लोग के मजाक उड़ावे खातिर रहल। एगो शिक्षित व्यक्तित्व होते हुए पंडित आम जनता के बीच रह के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्थान पर सफलतापूर्वक आंदोलन अनलन। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के आप सबको के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।

0: नमस्कार आदाब समाचारों में आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ G2G समझौता तय हो गया। मॉरिशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है जो नौजवानों को प्रेरणा देगी। मॉरिशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमीबर्ग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए। और कैमरून की सरहद के पास जाम्बोई खान के नजदीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। नमस्कार आदाब समाचार अब तफसील से। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ एक समझौते के जरिए मॉरिशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। G2G प्रोटोकॉल संधि का मकसद देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि इस पहल से लंबी अवधि का विजन आम हुआ है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: The signing of this memorandum is of strategic importance for Mauritius. One that will, above everything else, safeguard our energy security, reinforce the resilience of our economy, and further strengthen the bonds of trust and solidarity that indissolubly unite our two nations. On behalf of the government and the people of Mauritius, let me reiterate our deepest appreciation to Prime Minister Narendra Modi for his personal commitment to strengthening the Mauritius.

0: Mauritius-India partnership. For Mauritius, this MOU arrives at a particularly critical juncture when global energy markets are beset by unprecedented volatility. India is once again manifesting its unwavering commitment to the prosperity and resilience of Mauritius. The agreement we signed today embodies the translation of political resolve into tangible outcomes. As Prime Minister of Mauritius, I solemnly reaffirm my government's commitment to deepening the special and strategic partnership between Mauritius and India, rooted, as I've said, on solid anchors of history, shared values, trust, and solidarity.
1: भारतीय प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस संधि से दोनों राष्ट्रों के भरोसे की गवाही मिलती है, उन्हें सुनती हैं।
2: Mauritius's fuel security now will not rest on the uncertainty of tenders, but on the assurance of a five-year supply commitment from Indian Oil Corporation, covering the entirety of Mauritius's import requirement. This is, in fact, the first agreement of its kind that an Indian public sector oil company has concluded anywhere outside South Asia. India is not merely energy self-sufficient, but also a net exporter of refined petroleum products to the world. We do not see this capacity as ours alone. We see it as a responsibility to stand as a dependable, transparent, and stable source of energy for our friends and partners across the world.
1: नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं। अनाबेल वुलबेर की रिपोर्ट पर ये विवरण।
3: इस सुसज्जित कमरे में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किट्स मौजूद हैं। ये प्रयोगशाला, जिसे मॉरिशस ने अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला बताया जा रहा है, मॉरिशस के अधिकारियों और स्टेम पावर नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है। ये संगठन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टेम से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग सृजन और नए विचारों को विकसित करने की जगह के रूप में काम करेगी। आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं, इस लैब में करीब 24 कंप्यूटर हैं, जो एक सर्वर से नियंत्रित हैं, कई उपकरण हैं, ठेकेदार, टेक्नोप्रेन्योर, कॉलेज के छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र तथा खोजकर्ता अपनी पैदावारों की जांच यहां करने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच देना है, जिनके बारे में वे अक्सर पहले किताबों या केवल सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं। ये तरीका कुछ छात्रों को पहले से ही पसंद आ रहा है। इंपीरियल कॉलेज के लेक्शान जावन कहते हैं, इस लैब से छात्रों को लाभ होगा। जिनके पास विचार हैं, वे अपनी परियोजनाओं को साकार कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध उपकरणों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आईसीटी मंत्रालय में एआई यूनिट के अधिकारी रामा कृष्णा मुडालिया कहते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है, लोग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, यहाँ आकर वे अपना काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन मिलेगा, वे एआई आर्टिफैक्ट्स रच सकते हैं और जीवन तथा समाज की समस्याओं से निपट सकते हैं। एबेन स्थित ये प्रयोगशाला छात्रों, टेक्नोप्रेन्योर और शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। फिलहाल ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली है और आने वाले समय में इसके समय को बढ़ाने की योजना है।
1: मॉरिशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमीबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गईं ताकि मछली मार का समर्थन किया जा सके। वहां पर मौजूद मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ सहायक योजना का उल्लेख किया। ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं।
3: मेबर्ग गांव में सबसे ज्यादा मछेरे हैं। यहां 400 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं सीधे इसी काम से अपनी आजीविका चलाते हैं। ओजिना सीमा किस्तु कहती हैं, ढाई साल हुए हैं फिशिंग कार्ड मिला है। ये एक आसान पेशा नहीं है, हर रोज समुद्र में नहीं जा सकते।

0: $50.
1: 50 बनाने।
2: शॉ तुरंत कहते हैं कि वे 50 से ज्यादा वर्षों से मछली पकड़ते हैं, ये एक अच्छा काम है। नौजवान मछेरों से अच्छी तरह ये काम करने की मांग करते हैं। इस क्षेत्र में ये पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। जॉन गायल जेली कहते हैं उनके बड़े लोग मछेरे थे, अब वे भी ये काम करते हैं। खराब मौसम में समस्याएं होती है, तब वे अपनी जालें ठीक करते हैं। जय हरलाल कहते हैं कि 40 से ज्यादा सालों से वे मछली पकड़ते हैं, परिवार में सभी लोग मछेरे थे। मंत्री अरविंद बुलेल बताते हैं इन लोगों के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, वे मछली पकड़ सकते हैं, ऑयस्टर की पैदावार कर सकते हैं, आल्गे की पैदावार कर सकते हैं। मछेरा समुदाय के लिए भारी संभावनाएं हैं, सहायता कदम भी हैं। 65 साल की उम्र में उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और वे अपना काम भी कर सकते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूलर बॉक्स, फर्स्ट एड किट और आपातकालीन संकेत उपकरण वितरित किए गए। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाबिद कहते हैं स्पीड बोट का इंजन बदलने के लिए मंत्रालय ₹50,000 दे रहा है, DBM ₹1,00,000 तक का लोन दे रहा है। कुल 2483 मछेरों के साथ समुद्र स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण गतिविधि का टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है, जो तटीय समुदायों के लिए बहुत ही जरूरी है।
3: माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान का रहा। जानवरों की भलाई के लिए कोशिशें ठोस की जा रही हैं। गैर सरकारी संगठन कच्छिलापात आज सुबह सेंट मेरीज कॉलेज में गया था ताकि छात्रों को जानवरों की इज्जत करने, उनका दर्द समझने और उनकी देखभाल करने के लिए आगाह किया जा सके। अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट पर ये विवरण।
4: सेंट मेरीज कॉलेज में दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद ये छात्र एक खास सत्र में भाग लेने वाले हैं। कच्छिलापात गैर सरकारी संगठन की ओर से एक लघु सत्र का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद लोग अपनी आवाज बुलंद कर जताना चाह रहे थे कि जानवरों के प्रति लगाव है। लोग जोरा की ओर इशारा कर रहे थे और वो अपने प्रति इतना प्रेम लगा पाकर खुशी है। जोरा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और इसे पेट के पास वाले हिस्से में काफी चोटें भी लगी थी। उसे डायपर्स भी पहनना पड़ता है। अब उसके लिए एक छोटा सा इंतजाम भी कर लिया गया है इनके छोटे छोटे पंजों की जगह पर।
5: Zora, c'est une chienne handicapée qui nous rend dans la vie il y a deux mois. Qui fait une amélie, c'est pour montrer aux enfants du collège et la direction qui nous remercie d'ailleurs, qui la responsabilité, c'est quotidien quand on occupe des animaux.
4: Kathine, aur alag alag sthitiyon ka samna karte hue, jaise taise Zora ka jivan chal raha hai. Wo hai himmat, taqat, jeene ki chah rakhne wale mazbooti ka pratik.
6: Les chiens handicapés, ça me touche. Et j'ai deux chiens.
7: Qu'est-ce que tu as pensé de Zora?
6: Les conducteurs sont méchants.
4: Vidéo chalaya gaya jise yahan maujood log dhyanpurvak dekh rahe the. Shishak Nizami le chien. Kutton par aadharit. Netflix mein iska prasaran ho raha hai. Naam hai La Paroisse des chiens errants. Ye padri Gomez ke liye samarpit hain jo agle 1 October mahine mein Mauritius aayenge. Kal ke vayask banne wale aaj ke in naujawanon ke liye इसी संदेश पर जोर, जानवरों की रक्षा करें। ऐसी जान जो बिना किसी शर्त के सिर्फ देते ही है, लेकिन कई बार मनुष्य के रहम पर जीते हैं। ये अभी केवल शुरुआत ही है जागरूकता अभियान के लिए।
5: Faire une invitation, nous déjà invité à notre école si vous êtes intéressé pour nous faire la conscientisation sur la bientraitance animale, pas hésiter prendre contact avec nous.
4: नौजवानों को ये जानने का भी मौका मिला कि किसी दुर्घटना के चलते ये जानवर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहने, जीवन जीने की चाह मरती नहीं। ये बात जोरा की समझ में आ ही गई। ऐसे में इनाम के तौर पर वो एकाध बिस्कुट की हकदार तो जरूर है ना?
3: 18 सालों के बाद पोर्ट लुई थिएटर फिर से कार्यरत होने लगा है। निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी वक्त लगा और इस परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए लगे हैं। इस परियोजना के सफर पर ये विवरण।
2: पहला अध्याय 2008 में शुरू होता है। पोर्ट लुई का थिएटर अपने दरवाजे बंद कर देता है। करीब 200 साल पुरानी ये इमारत समय के

0: साथ जर्जर हो चुकी थी। चूहे और दीमक भी इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पोर्टलिस नगर पालिका के अनुसार ये इमारत सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए नगर पालिका के पास सिर्फ 50 मिलियन रुपए थे, जो इतने बड़े काम के लिए काफी नहीं थे। करीब 10 सालों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। 2018 में जाकर पहली बार काम शुरू हुआ। ये पहला चरण इमारत को मजबूत करने पर केंद्रित था। ये काम 2020 में पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 100 मिलियन रुपए थी। इस काम में फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने भी सहयोग दिया। भूषण रामलोल कहते हैं,
1: Le théâtre de Pauli, le ground floor du théâtre de Pauli, il est situé sous le niveau de la mer. Donc,
0: थिएटर का ग्राउंड फ्लोर समुद्र के जल स्तर के नीचे है। हमें फिर से एक बेसमेंट बनाना पड़ा। एक बंकर भी बनाया गया ताकि जब पानी ऊपर चढ़े तो उसमें न भरे। छत पूरी तरह सड़ गई थी, उसे पूरी तरह फिर से बनाया गया उन्हीं लकड़ियों से जो पहले से वहां मौजूद थी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले 3 साल बीत गए। जुलाई 2024 में भूषण रामलोल की अगुवाई वाली अबी कंस्ट्रक्शन को दूसरे चरण का ठेका करीब 400 मिलियन रुपए में मिला। इस बार मकसद सिर्फ इमारत को बचाना नहीं बल्कि उसके पुराने गौरव को वापस लाना था। सुनहरी सजावट, बालकनियां और 1850 की डोम को उसके मूल रूप में फिर से चमकाने का काम किया जाना है। डोम को फिर से बनाने के अध्ययन के लिए करीब 25 मिलियन रुपए का बजट था। हमने काफी बचत की और इसमें करीब 15 मिलियन रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर पोर्टविस थिएटर के पुनर्निर्माण की लागत अब करीब आधा बिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सभी तरह की समस्याओं के साथ साथ कई चीजों पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब आखिरी अध्याय की तैयारी चल रही है। थिएटर को पहले अगस्त 2025 में दोबारा खोलने की घोषणा की गई थी। अब इसके सितंबर 2026 में खुलने की उम्मीद है। लॉर्ड मेयर कहती हैं, अगर निर्धारित अवधि यानी अगस्त के आखिर तक ये मिल जाएगा तब सितंबर तक ये कार्यरत हो जाएगा। करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद पोर्टली थिएटर आखिरकार एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है।
2: कैमरून की सरहद के पास जाम्बोए खान के नज़दीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है जो खान में काम करते थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये खान गैर कानूनी तरीके से कार्यरत था, इसी वजह से वो खतरनाक था। अभी तक लाशों को निकाला जा रहा है। केंद्रीय अफ्रीका में कोलेरा का फैलाव होता जा रहा है। कैमरून और चैड में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों मौतें दर्ज हो रही हैं। साफ पानी नहीं है और स्वास्थ्य ढांचों की कमी है, इसी वजह से इलाज मुनासिब नहीं है। प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने फैलाव को रोकने की कोशिश की लेकिन जीवन स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। यूक्रेन की राजधानी में रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव में हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल कम होते जा रहे हैं। और अमेरिका में राष्ट्रीय कर्ज एक दशक में 40 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। वजह ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान बहुत खर्च किए गए और सूद दर भी काफ़ी बढ़ गए थे। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर से कम था। और अब करते हैं स्थानीय मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में कुछ अस्थिर बादल हैं और आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान और कल सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद बारिश होगी खासतौर पर पश्चिम में और हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समंदर चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दक्षिण पश्चिम

में न जाने की सलाह दी जाती है, वहां ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री।

ये बुलेटिन आप तक पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों की मदद मिली है और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की सहायता भी मिली है। नमस्कार, आदाब। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

शोक समाचार सुनिए. कोपरवर रोड गुडलैंड्स में 74 साल के 74 years old श्री जगदीश डामरी. श्री जगदीश डामरी जो जगदीश जग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनके घर कपरवर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM. तेरूज में 37 साल के 37 years old श्री विराज भागोबान जो दू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 10 बजे इनकी माँ सीता भागोबान के घर तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM. बिरला रोड कॉटेज में 45 साल की 45 years old श्रीमती जीना चिकोई पैदाइशी नाम अलीगन जो पूजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनके पति राजेश टिकोई के घर बिरला रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागुआ कासिया कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. परमिशन टुमारो एट 1 PM. श्वेनफिल रोड रिविया जोपो में 78 साल की 78 years old बीबी सुलमा रोजिद मोहतरमा बीबी सुलमा रोजिद पैदाइशी नाम बोला जो सुलमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज रात 9 बजे इनके घर श्वेनफिल रोड रिविया जोपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंटेलास्को का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 9 PM. बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग में 76 साल के 76 years old श्री वाल्मीकि देवी जो आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे के घर बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM. नंबर सेवन कॉन्क्रेल अल्बियो में 81 साल के 81 years old श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह जो शेखर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दो बजे इनकी पत्नी बसंती बायरू सिंह के घर नंबर सेवन कॉन्क्रेल अल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो पेटिट रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 2 PM. Avenue des Sablons, Grigny France में 61 साल के 61 years old श्रीधर्मराज चितामन जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी मंगल 25 अगस्त को दिन के 11 बजे इनके घर Grigny France से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Grigny France की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन ऑन ट्यूजडे एट 11 AM. SSR रोड कोची मिलिटिया में 77 साल के 77 years old श्री राजेंद्र तिलकधारी जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर SSR रोड कोची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वीरमैक की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:30 बजे हैं। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त शाम के 6:33 हो गए हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। रात बाकी है और बात भी बाकी है। मैं तो कहता हूँ कि अब रात की शुरुआत हो रही है और रेडियो मनोरंजन की लहरों पर इस वक्त आप अभी को सुन रही है। पायलों की खनक के साथ हम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुझे पता है कि आप लोग अभी काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं एंड आप बहुत ही थके हैं, हारे हुए हैं। बॉस के साथ भी थोड़ी सी वो कभी कभी दोस्ती हो जाती है तो कभी कभी एक करवाहट सी भी महसूस होने लगती है। यही जिंदगी है मेरे दोस्त, इसी को हम कहते हैं वर्क प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा भी हो आपको जब घर जाना है ना, अपने मूड को अच्छी तरह से रखना होगा क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं आपकी वाइफ, इंतज़ार कर रहे हैं आपके हस्बैंड, इंतज़ार कर रहे हैं आपके बच्चे, इंतज़ार कर रहे हैं आपके डॉगी। यू नो, गेट खोलने से की शुरुआत से ही आपके जो डॉगी हैं उनको एक रिएक्शन मिल जाता है और वो यू नो उनके जो दुम है वो हिलने लगते हैं। यस दोस्तों, मैं आपका साथ दूंगा यहाँ पर रात के 9 तक। इसका मतलब ये है कि नई सोच कार्यक्रम 6:30 से लेकर के 7 तक, फिर इसके बाद 7:30 से लेकर के रात के 9 तक वी विल बी हैविंग दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। बट स्टिल आप लोग मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5250-6200-5200-6200 पर। चलिए आज हम लोग आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास।

लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त शाम के 6:39 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रोज के रोज मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप कुछ करते हैं? क्योंकि रोज के रोज एक ना एक जो चुनौती है, यानी कि एक ना जो चैलेंज है, वो तो सामने आते हैं। इसका सामना करने के लिए क्या आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं? करना चाहिए मेरे दोस्त, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, उतना आपकी जिंदगी में जितने सारे जो प्रॉब्लम्स रोज के रोज आते रहते हैं, वो अपने आप में सॉल्व होते जाएंगे। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि यू नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंट एंड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास को दृढ़ करना चाहिए, उस विश्वास को मजबूत करना चाहिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, और उसको सॉल्व करने के लिए मैं तरकीब को ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैं उस प्रॉब्लम को लेकर के अपना रोना धोना या फिर माथा पच्ची नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन, आई विल ट्राई टू फाइंड ए फॉर्मूला, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। इसके बारे में सोचिए मेरे दोस्त। तब जाकर के आप खुद को देंगे शाबाशियां।

जाओ दोस्तों, अपने मंजर को नया बनाइए, अपनी जिंदगी में नयापन लेकर आए, तब जाकर के लगेगा कि हाँ, कुछ करने की एक ललक होनी चाहिए, कुछ करने की एक चाहत होगी और वो चाहत अंदर से ही पैदा होगी।

So, इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम में. एंड राइट नाउ नई सोच कार्यक्रम समाप्त हो रहा है. सो थैंक यू सो मच टू स्टे विद रेडियो मनोरंजन अभी के साथ. एंड हम मिलेंगे 5 मिनट के बाद.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

जिंदगी की असर खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि लोग आपसे कितने खुश हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को खुशी देने के लिए हम तो यहां पर आ ही गए हैं, इसीलिए आप और हम दोनों जिंदगी मिलकर के बिताएंगे। वेलकम बैक फॉर यो दिलों की आवाज कार्यक्रम। इस वक्त रात के 7:06 हो गए हैं। 5250-6200 आप लोगों की फरमाइश का जो दरवाजा है खुल गया है मेरे दोस्त।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी मिल करके बिताएंगे, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त रात के 7:10 हो गए हैं और इसी टाइम पर आप लोग घर पहुंच ही गए हैं या फिर घर पर हैं, कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ हैं। दिल से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपको कुछ ज़्यादा बड़ी बात मतलब ज़्यादा काम नहीं करना है, बस अपने फ़ोन को फटाफट उठा करके आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 1-402-4-7-0 पर, 402-8-0-7-0 पर। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब आप हमें फ़ोन कर रही हैं, पूरी डिटेल के साथ आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ कौन हैं और एग्जैक्टली आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, इसमें ये यहाँ पर उन लोगों का जो नाम है उसको ऐड करने में मैं कोई परहेज नहीं करूँगा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा। और अभी के लिए चलिए, एक बहुत ही सुंदर प्यारे गीत है जिसकी फरमाइश की है भाई आत्माराम ने, और ये गाना है झुमरू।

कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतना सारा प्रॉब्लम आता है कि हम सबके सामने में अपने दिल की जो बात है, अपने दिल के जो का जो दर्द है उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तब उसके बाद हम लोग बंद कमरे में या फिर एक लॉन्ग ड्राइव अकेले ही जा कर के हम रोना शुरू कर जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस तरह की स्थिति में ही हैं। भरे नैना मोरे नैना, झड़े मोरे नैना।

चलिए इस वक्त हमारे साथ वेदांत हैं और साथ ही साथ ताई। इस वक्त वे लोग नरेंद्र भारती के यहाँ ठहरे हुए हैं इन दिल्ली। By logging on www.mbcradio.tv, वे लोग हमारे साथ strongly connected है। Hello Vedant, ये गाना आप लोगों के नाम दोस्तों और दिल्ली की पुरानी यादें फिर से ताजी हो गई जी। ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

जंप दोस्तों, अगर आप किसी से बेमतहाशा मोहब्बत करते हैं तो ये गाना डेफिनेटली उनके नाम हम यहाँ पर चला रहे हैं। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर अगर आप ड्राइव कर रही हैं, आप मैसेज नहीं भेज रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैसेज, ये जो गाना, जो म्यूज़िक इस वक्त चल रहा है वो आप लोगों के नाम।

और इस गाने की फरमाइश की है अनीता जो फिकोफ्ला के रहने वाली है पैतुम फैमिली। वी ऑल्सो हैव राजपति, बेटा है अंतिश और अंकुश, मनीषा अशीमा उनके बहू, अंशा हिमेशा, आध्या और आदि के नाम।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ अंजू भी जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा उनकी दो बेटियों के लिए ये गाना हो जाए, और जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

और इस वक्त हमारे साथ बबीता बिसेसर जुड़ी हुई है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है हमारे शो के साथ। थैंक यू सो मच बबीता जी, उनके लवली हस्बैंड बजय के साथ। और वी डू हैव निधीश व्योमिनी, उनके लवली प्यारी जानवी और उन जानवी की छोटी बेटी के नाम। वी ऑल्सो हैव अमित और जितने सारे बिसेसर फैमिली है, विदाउट फॉरगेटिंग प्रभा, प्रश्नी एंड पुष्कर फ्रॉम कनाडा बाय लॉगिंग ऑन www.mbcradio.tv। इस वक्त रात के 7:48 हो गए हैं। वेटिंग फॉर यू ऑन 5250620।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक का 8 बजे हैं।

हमारी आवाज आप लोगों की दिल की धड़कनों के साथ जुड़ जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। रात बाकी है और बात भी बाकी है। नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम। इस वक्त रात की 8:06 हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आप लोग इस वक्त भी साथ देती जा रही हैं हमारे साथ। वी डू हैव रिहाना, हमेशा हमारे साथ जुड़ जाती है फिनिक्स से। मोहतरमा ने कहा कि जो आने वाले गीत हैं जालिला जिहाद के लिए हो जाए, जो इस वक्त दूसरे देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी ऑल्सो हैव दारेन, श्वेता, रविश, प्रेशा, लविशा, सभी अपाडू फैमिली जो खुशनुआ के रहने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स ये गाना आप लोगों के नाम भी। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

चलिए नीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपने पति अजय और आहान और आयुष के नाम उन्होंने ये इस गाने की फरमाइश की है।

जिस इंसान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी से हार गया होगा, तो मुझे लगता है एक नई उड़ान की ओर लेकर के जाना होगा। इस गाने को बहुत ही गौर से सुनना। ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जिनकी आंखों में एक आंसू है या फिर एक सैडनेस है, और उस सैडनेस को हटाने का समय आ गया है।

In fact, that was a song जो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक move on सा जो feeling होता है वो सामने आता है. जहाँ बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ scenario को लेकर के या फिर कुछ circumstances को लेकर के वे लोग अपने जो कैसे मैं कहूँगा अपने की अपने जो routine है या फिर अपने जो ज़िंदगी है वो रुक जाते हैं. वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है. तो इट्स ओके फाइन, जो हो गया है सो हो गया. इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई. हमारे जो शरीर हैं, हमारे जो दिमाग हैं, शक्ति है इसमें. लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर हम अगर लेंगे अपनी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इनवाइट सो मेनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों को हम लोग स्वागत करेंगे. सो अगर हमें लगता है कि स्ट्रेस लेने से या फिर ज़िंदगी के रुक जाने से हमें खुद अपने आप को टॉर्चर करें, सो वाई, ये सब क्यों करें? आपकी ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है. तो चलिए, ज़िंदगी न टूटे लड़ी इस गाने की फरमाइश की है नंदा जो पाई के रहने वाली हैं. उनके सभी फैमिली मेंबर्स के नाम, वी डू हैव गणेश एंड पुनीता फैमिली, साथ ही साथ है अविनाश, अभिषेक, अशिल, विद्या, दीपक, अश्विना, गुल्ली और अरवी के नाम.

We do have Pavan from Kalbas और उन्होंने अपने दादी जी के लिए ये गाना इस गाने की फरमाइश की है ललिता जिनका बर्थडे है बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम ब्रदर सुनील सिस्टर है माला वी ओसा सीला साथ ही साथ है छोटे छोटे बच्चे चलिए ये गाना आपके नाम

और ये गाना खासकर पूजा के नाम, जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, उनके लव के नाम। मैंने उनसे पूछा लव का नाम क्या है, उन्होंने कहा बस कह दीजिए लव, उसको पता चल जाएगा। मैंने कहा हाय हाय क्या बात है। सो गाइस कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक, टिल देन अभी को दीजिए इजाजत, विल बी मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, बाय बाय।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day, all night.
4: MBCT programs की झलकियाँ
5: जहाँ भी ले जा रहे हो वहाँ पहुँचना नहीं चाहती, पर ये रास्ता ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो।
6: शुक्रवार 21 अगस्त को MBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म हाईवे 2014 की ये मूवी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा पर फिल्माई गई हाईवे। MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
5: यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा।
7: नैना, तुम्हारे लिए अंदर खतरा हो सकता है।
5: शायद, पर अब जो भी है मुझे ही झेलना होगा। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, पर मेरा पूरा विश्वास है कि उसकी आत्मा की सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा। समीर,
6: शनिवार 22 अगस्त को MBC3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नैना 2005 की ये मूवी उर्मिला मातोंडकर और अनुज पर फिल्माई गई नैना।

0: धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: किरण के ओर से आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत बा। आप सब कोई के करजोर नमस्ते। ई बखत रात के 9:03 होल बा और आज है बीफे 20 अगस्त 2026 के रात्रि। और कहूँ कहूँ पानी बरसता, कहूँ कहूँ थोड़ा गर्म करके शुरू कर देले बा। ऐसन में आप हमने संगे जुड़ल रहिया। आपके मनपसंद प्रोग्राम ई बखत चलता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का, जेकर इंतजार आप सब कोई के रहेला। ई पहला गीत आप सब कोई के नाम संभावती दुमन के आवाज में, नाकों के फुलिया गिरता था गिरे दे। और जब तक कि गीत चली आप सब कोई की फरमाइश हम नोट करे के यहाँ पर पूरा रूप से तैयार है।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all
0: NBC
3: night.
0: NBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: मेरे पास टिकट के पीछे मैनेजर रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है।
5: तुम वहाँ मिलोगे ना?
4: हाँ बाबा।
6: अटक गए होंगे कहीं पे, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा।

रविवार 23 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 2006 की ये मूवी अभय देओल और सोहा अली खान पर फिल्माई गई आहिस्ता आहिस्ता

रात के 9:14 होल बा और आप लोग के फरमाइश आवा था एक के बाद एक, और जितना भी गीत के फरमाइश आवा था वो सब चलावे के हमार पूरा कोशिश रही। अगला गीत बिस्वानी दीपा की आवाज़ में लीलो सड़िया, और ये गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश। अमृता गणेश जी ये गीत ख़ास तौर पर सोनिया परी और मीनाक्षी और विशान और साथ में उनकर बेटी पूनम के नाम करत हवन। उधर घोंगुप से सुनीता जी यही गीत अपन बहिन अमृता और कोंगुमा के दूसरा बहिन विमाला के नाम करत हवन। और उधर यही गीत सुने चाहत हवन ललिता जी। ललिता जी ये गीत नाम करत हवन देवीना ज्ञानी छोटी प्रभावती और हरीश और आत्माराम भैया और माला रामजावन के नाम। और लीलो सरिया जेके भी पसंद है, जेकर भी मनपसंद गीत है, चला ये गीत आप सब कोई के नाम बिस्वानी दीपा की आवाज़।

ये वक्त रात के 9:20 होगल बा और हमने के साथ रही अभी से रात के 11 तक 2 के ये प्रोग्राम चलेला आपके फरमाइश के दम पर। और अगला जो गीत चली ये गीत आजकल जो श्रावण मास चलता ओकर संदर्भ में बा शिव के महिमा लीलो माथुर के आवाज़ में। और जितना कोई भी अभी श्रावण मास से जुड़ के व्रत पूजा प्रार्थना करा था वजह आप सब कोई के नाम ये अगला गीत खास तौर पर ई गीत के फरमाइश अलबा शीला जी के ओर से उनकर पति सुरेन उनकर सब लड़का के नाम और अभी उनकर संगे हवन सोनम यौवन उधर कबीर रुद्राक्ष श्लोक शशि उनकर बेटी किरण और फिर आंसले सब कोई के नाम। और ख़ास तौर पर जितना कोई भी अभी श्रावण मास के पालन करत हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना।

0: लीलो माथुर के सुंदर मधुर आवाज में शिव की महिमा के बाद जो दूसरा गीत चली वह विनोद सिद्धत की आवाज में संगत कर जान के पानी पिया छान के गीत सुने चाहता वन सेजिया मिल से शांता सुखारी जी। आप गीत अपन सब लड़का लोग के नाम कर थवा बेटा सुदेश जे हमेशा हमी के सुनते रहेलन और साथ में हवन आपके दूसर बेटा रवीन उनकर पत्नी किरण और फिर प्रवेश अशोक सुजीत आपके पूरा परिवार संजना। बहुत प्यार से शांता जी ये गीत आप अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा ये प्रोग्राम आप हमेशा सुनते रहेला आपके प्यार खातिर आपके वफादारी खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसन हमने के कितने ऐसन श्रोता हवन जा जे लोग के बहुत बेसब्री से ई प्रोग्राम के इंतज़ार रहेला उ चाहे गरम करी चाहे ठंडा करी चाहे पानी बरसी तूफान आए आप लोग के साथ हमेशा रहेला कोनो भी परब रही कोनो भी बखत रही आपके प्यार आपके फ़ोन कॉल्स आपके बातचीत ई प्रोग्राम में शामिल होते रहेला ई खातिर हमने बहुत बहुत आप लोग के शुक्रिया करत है जा धन्यवाद करत है जा। तो चला अगला गीत विनोद सिद्धत के आवाज में।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day all
4: night. NBC TV programs ki jhalkiyan.
5: Pehchan liya na tumhara purana saathi Mannu. Ab bata ki haram ki kamai kaun khata hai? Tu ya main? Gappa. To tu mujhe jail bhej kar mere paison se aaram se yahan par टीवी देख रहा है।
4: रविवार 23 अगस्त को NBC 4 पर शाम के 8:30 बजे 1998 की हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट शाहरुख खान पर फिल्माई गई।

रात के 10 बजे में अभी लगभग और 20 मिनट कमती बा और फिर 11 बजे तक हमने के साथ रही। अगला जन गीत चली सुना नोयान के आवाज में, बाचा बोल जिंदगी बा चारों तरफ गोल। ये गीत सुने चाहत हवन पॉम्पलमुस से शोभा जी, और ये गीत शोभा जी खुद अपन नाम करत हवन। उधर बोनतिया से जानवी अभी हमने के सुनत हवन, जानवी के नाम ये अगला गीत। और एक बात जो अन्य फरमाए शालबा वो चलावे के ज़रूर अभी चलावब जा। और जितना कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जा, चाहे आप सफ़र पर हुई बा और देखा है जा कि सफ़र पर आजकल हमने के सड़क तो वैसे ही बा, लेकिन दुर्घटना कुछ जस्ती बढ़ गल बा। काहे बढ़ाता कैसे बढ़ाता ये बात के जे समझे छबा, तो सबसे बड़ा बात तो यही है कि चाहे बहुत ध्यान से आपके अपन सफ़र तय करे के, बहुत ध्यान से गाड़ी चलावे के, और जे ज़रूरी नहीं रही तो रात के चाहे नहीं निकले के, लेकिन जे ज़रूरी बा तो पूरा सावधानी के साथ अपन गाड़ी चलावा। और डिफेंसिंग ड्राइविंग एगो चीज़ के नाम है, चाहे अब हमने के ई बहुत हद तक अपनावे के। और जे हमने के अपन कमरा में अपन बिस्तर पर लेटे लेटे सुनत हवा, तो आप सब कोई के नाम ई गीत। और जितना कोई अभी जे काम करत हुई बा, काम करते करते हमने के सुनत हवा, तब भी हमने आपके साथ है जा और आपके याद करत है जा। आपके जोन समय बा वो अच्छा से गुजरी, बहुत हौसला के साथ गुजरी। रात के काम करे के आसान नहीं है, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और चला एगो बहुत ही एगो उत्साहपूर्ण गीत चलाओ अब जा, मज़ेदार गीत जेकर से आप सब कोई के एगो ऊर्जा के लहर महसूस होई।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day, all night.
4: MCT programs की झलकियाँ
5: जहाँ भी ले जा रही हो वहाँ पहुँचना नहीं चाहती, पर ये रास्ता ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो।
6: शुक्रवार 21 अगस्त को MBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म हाईवे 2014 की ये मूवी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा पर फिल्माई गई हाईवे।

नाउ किरण संगे। ये जो धुन अभी चला था एकर से के परिचित नहीं बा के नहीं जाने ला ये कौन धुन है। रंभा राम तो हल्की आवाज में जुबेदा लोतु लेके जाए ये गीत सुने चाहता वन भाई अबू ये गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कला चोटी और उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन। और भाई अबू जितना कोई ई बखत सुनत हवजा आप सब कोई के नाम भी ई गीत के फरमाइश कर ले हवन।

रात के 10 बजे था और जो अगला गीत चली वह नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में हिले साबुन हिले लुंडा और ये गीत सुने चाहा था वन सेंट पियर लाविनिया से अफेज ये गीत जितना कोई ये बखत ये प्रोग्राम सुना था वजा आप सब कोई के नाम करा था वन

गीत गवाई में जाना है चंदा, ई गीत के फरमाइश कर ले हवन रोजिल से साजिद, और ई गीत आप अपन दोस्त सरोवर के नाम करत हवा, जे कनाडा में हवन और जे आज काम पर निकल हवन, घरे हवन और सुनत हवन ई प्रोग्राम, और ई गीत आप सब कोई के नाम जे गीत गवाई में खुश रहला जाए के।

सिया मांगे अयोध्या के राज सरयू नहाने को। ई गीत के फरमाइश कर ले हवन बॉशेरी से कल्याणी जी, और ई गीत आप नाम करत हवर गीता राधा की सुन अंजू, सब परिवार बड़की मुनुवा शोभा उदित और आपके पूरा परिवार के नाम बॉशेरी से कल्याणी जी के ओर से।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all night.
4: MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: मेरे पास टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है।
6: तुम वहां मिलोगे ना?
5: हाँ बाबा।
7: अटक गए होंगे कहीं पे, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। ए छोटू, ये रहा, ले क्या?
8: ये लग जाए, अंकुश भैया ने भेजा है।
6: तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच।
0: रविवार 23 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 2006 की ये मूवी अभय देओल और सोहा अली खान पर फिल्माई गई आहिस्ता आहिस्ता।

रात के 10:15 हो गल बा और लगभग 45 मिनट के हमने के साथ बाकी बा। आप लोग ई बखत तक साथ देवेला जा बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जन गीत चली ई गीत के मांग कर ले हवन बुआशेरी से धनी जी, और धनी जी के जो सबसे मनपसंद गीत है उनमें से एगो है धना जी नाव जी के गावल धुआं उड़े ले जाला सीटी बजे ले जाला जवानी के रेल। ये गीत सच में उनकर फरमाइश पर सुनते सुनते हमके भी बहुत पसीना लगल बा। तो चला इस सुंदर गीत धना जी नाव जी के आवाज़ में ये गीत सुनी जा धनी जी के फरमाइश पर।

बड़की मसाला पिसेला ये गीत सुने चाहत हवन क्रिश हृदय के आवाज में। फ्लिकॉन फ्लक्स से अनिता जी और अनिता जी ये गीत नाम करत हवन अपन पति राज, बेटा अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.

0: 道。
1: Your kind of music all day, all night.
2: NBC TV programs की झलकियाँ।
3: मैं जान लिया ना, तुम्हारा पुराना साथी मन्नू। अब बता, ये हराम की कमाई कौन खाता है? तू या मैं? गब्बा, तो तू मुझे जेल भेजकर मेरे पैसों से आराम से यहाँ पर टीवी देख रहा है।
2: रविवार 23 अगस्त को एमबीसी 4 पर शाम के 8:30 बजे 1998 की हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट शाहरुख खान पर फिल्माई गई।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your Mono station.
0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: आज की रात भोजपुरी तड़का में आप हमारे साथ देवत हवा रात के 9 बजे से और 11 बजे में लगभग 10 मिनट कमती बा आपके साथ खातिर, आपके प्यार खातिर, आपके फ़ोन कॉल्स खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की मुलाकात काल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर में और नहीं तो भोजपुरी तड़का में फिर से मिलब जा आवत बीफे के। अपन ख्याल रखिए श्रावण मास के आप सबको के एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और अभी से एक सप्ताह तक जो तैयारी चला था रक्षाबंधन के ई खातिर भी आप सबको के बहुत बहुत शुभकामना। अपन ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल. तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे. अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में.

तो मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबा होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे। तो जहां भी है आप मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में चलिए जी। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या हो सकता है सफर पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: याद कीजिए ये उन दिनों को, वाकई में वो दौर अलग था, वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर। बिल्कुल जी, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो शायद इस वक्त काम पे हैं। एंड इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करना चाहेंगे बो कोराज माय डियर। तो चलिए, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर पुरानी फिल्मों के गीत पुरानी यादें और वही पुराना एहसास। चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं दोस्त, और अगला गाना हम ऐसे पेश करना चाहेंगे जो हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठे आंखें बंद करके अपने खूबसूरत यादों में खो जाइए, उनको याद कीजिए। होंठों पर आम प्रेटी मच्छों की छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी। तो ये रहा अगला गाना खासकर आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: You're listening RM-Free Radio. Radio. Radio.
1: ओए कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ। तुम खाओगी?
1: हाँ, लेकिन वेजिटेरियन।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,